0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य

सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2025 प्रातः के 5:55 और 56 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर एक साथ आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख हर्ष करेंगे। विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद पीए आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अतुलित बल के धाम है संकट मोचन हनुमान, हृदय चीर कर दिखा दिया बसते जहां श्री राम। पवन वेग से चलते हैं दुष्टों का करें संहार, भक्तों की नैया पार लगाते इनकी महिमा अपरंपार।

शून्य से अंत तक शिव का ही विस्तार है, कण कण में गूंजता बस शिव का ही सार है। विष पीकर जो जगत को जीवन का दान दे, ऐसे औगड़दानी को मेरा प्रणाम है।

भरोसा राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तुलसी अर्पण कर दिया ये जीवन और संसार, श्री राम चरण की धूल ही अब मेरा श्रृंगार।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ आज की वंदना अब यहीं संपन्न होती है। आज की वंदना में भावांजलि थी राजेंद्र जैन, उदित नारायण, रानी रूपलता, हरप्रीत कौर और अनूप जलोटा की।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जो कर्तव्य कल करना है उसे आज ही कर लेना अच्छा है। मृत्यु बड़ी निर्दय है, वे कब आ जाएगी उसका कुछ पता नहीं। कल के भरोसे मत बैठे रहो, कल किसने देखा है। बस और समय मत चाहो, जो कुछ करना है अब निश्चय ही कर लो। अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बनाने की आदत डाल लेना आसान है, लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी बड़े उत्तम शब्द निकृष्टतम व्यक्तियों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। हम देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की चर्चा करते हैं और बहुधा तथा कथित देशभक्त निकृष्ट कार्यों में भाग लेते हैं, इसलिए इस बात का कुछ अधिक महत्व नहीं है कि मैं कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग करता। अंतिम कसौटी कर्म है। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में कभी नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान क्षणों को जो व्यर्थ ही गंवाते हैं, उन नर पशुओं को नमस्कार। अधिकांश व्यक्ति जितना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं, उतने ही समय में संसार के अनेक महापुरुषों ने चिर स्मरणीय कार्य कर दिखाए हैं। जो लोग ये बहाना किया करते हैं कि हमको सेवा कार्य अथवा परोपकार के कामों के लिए अवकाश ही नहीं मिलता, उनको महापुरुषों के जीवन पर ध्यान देकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए। सफलता को खो देने का निश्चित तरीका अवसर को खो देना है। गया आज फिर कभी लौटने वाला नहीं है, इसलिए यदि अच्छा करना है तो आज ही कर। कौन जाने कल उगने वाला सूर्य तू देख सके या नहीं। जो बीत चुका उसे भूल जाओ, वो लौट नहीं सकता। भविष्य की बात सोचो और उसे मूर्तमान करने के लिए आज ही सरंजाम जुटाओ। सुअवसर की प्रतीक्षा में ना बैठे रहो। ज्योतिषी से मुहूर्त ना पूछें। हर दिन और हर पल काम करने के लिए शुभ मानकर चलें। जो अपने कल्याण की बात है उसे आज ही करें। वृद्ध होकर क्या करेंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में अपने शरीर भी भारभूत हो जाते हैं। ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझ सके और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो? फिर समय को व्यर्थ नष्ट ना होने दो, क्योंकि वही तो जीवन तत्व है। समय का सदुपयोग ना करने से मनुष्य दीन और दुनिया दोनों में कंगाल हो जाता है, इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो कार्य आपके सामने है उसे शीघ्रता और निष्कपट भाव से करना ही कर्तव्य है, यही आज के अधिकार की पूर्ति भी है। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बहुमूल्य है। प्रत्येक क्षण भगवान की प्राप्ति में सेतु बन सकता है, इसलिए जीवन का कोई भी क्षण प्रमाद में न करने

0: अयोग्य कर्मों में या व्यर्थ में कभी नहीं जाना चाहिए। समय की कदर करो। प्रत्येक दिवस एक जीवन है, एक मिनट भी फिजूल ना गवाओ। जिंदगी की सच्ची कीमत हमारे वक्त का एक एक क्षण ठीक उपयोग करने में है। सत्य का दुर्व्यय करना अपने ही जीवन से द्वेष करना है। समय के द्वारा ही जीवन का संगठन हुआ है। कल का काम आज और शाम का सवेरे ही कर डालो। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि तुमने क्या कर लिया और क्या शेष रह गया। अवसर की प्रतीक्षा में ना बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। उसका सही उपयोग कर सके तो बड़ा अवसर भी आपके सामने हाथ बांध कर आ खड़ा होगा। समय प्रकृति का खजाना है। घंटे और घड़ियां वे उसकी मजबूत तिजोरी हैं। क्षण उसके मूल्यवान हीरे हैं। इन अमूल्य हीरों को व्यर्थ ही इधर उधर ना फेंको।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है दंत विकार और घर।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, दांत शरीर का एक ऐसा अंग है जो आपके व्यक्तित्व के आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप बात करते हैं, मुस्कुराते या हंसते खिलखिलाते हैं तो दुग्ध धवल मोतियों जैसे दांतों की पंक्ति आपके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। किंतु यदि आपके दांत गंदे तथा सांस दुर्गंध युक्त है तो इससे अधिक अप्रिय और कुछ नहीं हो सकता। अधिकांश व्यक्ति शीघ्रता से दांतों की आधी अधूरी सफाई करके संतुष्ट हो जाते हैं। इसी लापरवाही का परिणाम होता है दांतों की अनेक समस्याएं। अतः उचित यही है कि प्रतिदिन दांतों की भली भांति सफाई की जाए। दांतों से संबंधित तीन समस्याएं मुख्य हैं, दांतों में सड़न, मसूड़ों में दर्द सूजन तथा दांतों से खून का रिसना। जहां तक दांतों की सड़न का सवाल है तो दांतों पर कीटाणुओं द्वारा निर्मित सफेद पपड़ी अर्थात फ्लॉक ही दांतों में सड़न का कारण है। यह दांतों के इर्द गिर्द बीच में तथा मसूड़ों के नीचे बनता है। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। 20 बूंद लहसुन का रस 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से दांतों की सड़न, दर्द एवं बदबू दूर होती है। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर घूंट भरें। 15 मिनट मुंह में रखने के बाद उसे पी जाएं। दांतों की सड़न, मसूड़े की सूजन और बदबू समाप्त हो जाएगी। मसूड़ों में दर्द सूजन, राई या सरसों के तेल में बारीक नमक मिलाकर मंजन करने से दांत तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। इससे दांत व मसूड़े के दर्द में आराम भी मिलता है। मसूड़े के दर्द में हल्दी के टुकड़े मुंह में डालकर चूसें। दाढ़ के दर्द में नमक मिले अदरक के टुकड़ों को चूसना लाभदायक होता है। मसूड़े में सूजन होने पर हरा पुदीना पानी में उबाल लें और उस पानी के कुल्ले करें, तत्काल आराम मिलता है। पानी में मेथी उबालकर उसके कुल्ले करने से मसूड़ों को आराम मिलता है। दांत के दर्द और मसूड़ों में सूजन होने पर लहसुन को पीसकर उससे धीरे धीरे मालिश करने से आराम मिलता है। प्याज के रस को मसूड़ों पर मलने से मसूड़ों की सूजन कम होती है। यदि भुने सुहागे के साथ काली मिर्च पीसकर मसूड़ों के घावों पर लगाया जाए तो मसूड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांत दर्द में लौंग का तेल लगाने से भी आराम मिलता है। इससे सूजे हुए मसूड़े भी ठीक हो जाते हैं। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है और दांत मजबूत होते हैं। दांतों के दर्द में तुलसी के ताजा पत्ते तथा काली मिर्च पीसकर दांतों के नीचे रखने से दांत का दर्द चला जाता है और दांत के दर्द में दालचीनी के तेल का फाहा लगाने से तत्काल आराम मिलता है। तो श्रोताओं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे दांत स्वस्थ रहें तो इन उपायों को

0: घरेलू उपचार के रूप में अपना सकते हैं और अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। स्वतः आज के इस कार्यक्रम में बस जानकारी यहीं तक, अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। जानकारी का विषय था दंत विकार और घरेलू नुस्खे। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, आज सुबह 6:45 यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 295। सुबह 7 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक रंग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रहलाद सिंह मेहरा द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

सवेरे 7:31 पर प्रस्तुत होगा फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स। सुबह 9:25 पर प्रस्तुत होगा गौरव भारत देश के।

सुबह नौ बजकर 50 मिनट पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विनय अग्रवाल द्वारा। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक दक्षिण कामरूपा की गाथा का एपिसोड नंबर 11।

सुबह 11:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मन भावन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कुछ गीत। दिन में 12:10 पर प्रस्तुत होगा फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत और दोपहर 2:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आज आप सुनेंगे 70 के दशक के कुछ हिट फिल्मी गीत।

शाम 5 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आज शाम। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। शाम 6:20 पर प्रस्तुत होगा किसान साथियों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

शाम 7 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम कानून और हम। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत सुरेश वाडकर द्वारा गाई कुछ गजलें।

श्रोता, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 295।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की भाग संख्या 295। कलाकार थे श्रीकांत परगांवकर और सुरेश वाडकर। संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रियसंसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्डदेशं सम्प्राप्स्यति। 17,2,000 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्डदेशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडनदेशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडनदेशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्तव्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविधक्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह

0: भारतस्य सहभागित्वं इतोपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपादलस्य नेता हिमन्त बिस्वा सर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं सर्मावर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रहलाद सिंह मेहरा द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:14 हुए हैं। अब सुनिए कुछ जरूरी संदेश।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:18 होने को है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा,

0: प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
5: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
5: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
4: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
5: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़

0: एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
2: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वो देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
5: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो, जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं। लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
1: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर

0: गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7:32 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका रेडियो साथी अनिल राजपूत। आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में अपने समस्त श्रोताओं का आत्मीय अभिनंदन करता हूं।

दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी जद्दोजहद से गुजर रहा है। किसी के पास पैसा है मगर सुकून नहीं, किसी के पास सपने हैं मगर मौके नहीं, और किसी के पास सब कुछ होकर भी अंदर एक खालीपन सा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। सुबह की चाय में, पुराने गानों की धुन में, बारिश की बूंदों में। शायद उन्हें पता होता है कि जिंदगी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों से खूबसूरत बनाई जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब बड़ा घर होगा, जब अच्छी नौकरी होगी, जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तभी हम खुश हो पाएंगे। लेकिन सच ये है दोस्तों कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, खुशी रास्ते में बिखरे उन पलों का नाम है जिन्हें हम अक्सर जल्दबाजी में खो देते हैं। आज के दौर में इंसान सबसे ज्यादा भाग रहा है। ये बात सच है कि हर कोई बेहतर जिंदगी चाहता है, लेकिन इंसान बेहतर जिंदगी पाने के फितूर में अपने आज को जीना ही भूल गया है। आजकल हम मोबाइल फोन में मुस्कुराते चेहरों को देखकर अपनी जिंदगी को बेरंग मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द भरी कहानी

छुपी होती है। कोई भी इंसान पूरी तरह खुश नहीं है और शायद यही जिंदगी की खूबसूरती भी है, क्योंकि अगर दुख ना होते तो खुशी की कीमत कौन समझता, अगर रात ना होती तो सुबह का इंतजार कौन करता, अगर संघर्ष ना होते तो जीत का स्वाद कैसे पता चलता। श्रोताओं, जिंदगी दरअसल एक चलचित्र यानी एक मूवी की तरह है। हर सीन हमेशा अच्छा नहीं होता, इसमें कुछ हिस्से दर्द वाले भी होते हैं, कुछ किरदार धोखा भी देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, कोई समझने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, मगर यकीन मानिए इंसान सबसे ज्यादा मजबूत भी उसी वक्त बनता है जब उसे खुद का साथ मिल जाता है, जब वो अकेले बैठकर अपने दर्द से बातें करना सीख जाता है, जब वो ये समझ जाता है कि हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। और श्रोताओ, जिंदगी तब और भी खूबसूरत लगने लगती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुलना ही खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा शोहरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी कम खूबसूरत है। कई बार एक साधारण सी जिंदगी भी बहुत शानदार होती है, जहां शाम को घर लौटने पर कोई पूछ ले कैसा गया आज आपका दिन। बस कई लोगों के लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। श्रोताओ, जिंदगी को हसीन बनाने के लिए कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं चाहिए। कभी किसी थके हारे इंसान को मुस्कुरा कर सहारा दे दीजिए, कभी माँ बाप के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, कभी खुद को माफ कर दीजिए, कभी पुरानी गलतियों का बोझ उतार दीजिए। यकीन मानिए दिल हल्का होने लगेगा। हम सब जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ते रहते हैं, पैसा, सामान, रिश्ते, उम्मीदें, लेकिन असली सुकून कई बार कुछ चीजें छोड़ देने में होता है, कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ शिकायतें, क्योंकि हर बोझ उठाकर चलेंगे तो ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होगी, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई कमी हमेशा रहेगी, लेकिन खूबसूरती इसी में है कि उन कमियों के बावजूद भी हम हंसना सीख जाए, बारिश में छुपने की जगह उसमें भीगना सीख जाए, हार कर फिर उठना सीख जाए, और बिना किसी वजह के भी जिंदगी से प्यार करना सीख जाए, क्योंकि आखिर में पीछे बस यही रह जाएगा कि हमने जिंदगी को कितनी शिद्दत से जिया, हमने कितनों को हजाया, कितनों का हाथ थामा और खुद कितनी बार दिल खोलकर मुस्कुराए। अगर जिंदगी मिली है तो उसे सिर्फ काटिए मत, उसे दिल खोल कर जी लीजिए। सुबह की धूप को महसूस कीजिए, रात की खामोशी को महसूस कीजिए, अपने लोगों की अहमियत समझिए और खुद से दोस्ती कर लीजिए। फिर देखिए वही जिंदगी जो कल तक बोझ लगती थी आज हसीन लगने लगेगी, क्योंकि सच यही है जिंदगी हसीन हो सकती है जनाब, उसे हसीन बनाना आना चाहिए। और जो ये हुनर सीख गया समझो उसने जीना सीख लिया। तो आज दिल खोल कर मुस्कुराइए, थोड़ा कम सोचिए और खुलकर जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी हर दिन हर सुबह हम सबको ये मौका देती है इसे हसीन बनाने का, एक नई शुरुआत करने का। और किसी ने क्या खूब कहा भी है कि जिंदगी हसीन है अगर हसीन बना सको, गम को हसी की अगर चादर में छुपा सको, ये दुनिया कई बार गिराएगी तुम्हें, तुम हर बार अगर खुद को फिर से उठा सको, मोहब्बत के दिए हर मोड़ पर जलाते चलो, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान कर ला सको, जो बीत गया उसे किस्मत का फसाना समझो, जो मिल गया उसे रब का नजराना समझो। हर सुबह ये कहती है कानों में धीरे से, जिंदगी हसीन है अगर हसीन बना सको।

श्रोताओं, आज 12 मई है और आज का दिन समर्पित है उन हाथों को जो दर्द में दवा बन जाते हैं, उन कदमों को जो थककर भी रुकते नहीं, और उन मुस्कुराहटों को जो अस्पताल की उदास दीवारों के बीच भी उम्मीदों की रोशनी जगा देती है। आज हम सलाम कर रहे हैं दुनिया भर की नर्सों को, उनके समर्पण को, उनके साहस और उनके सेवा भाव को, जो किसी पूजा से कम नहीं। हर वर्ष 12 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाती है।

ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटेंगल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल एक ऐसा नाम जिसने नर्सिंग को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम दिया। साल 1854 क्रीमिया युद्ध चल रहा था, हजारों सैनिक घायल थे, अस्पतालों में गंदगी थी, इलाज की व्यवस्था बेहद खराब थी। तब फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रात रात भर अस्पतालों में घूमकर घायलों की सेवा की। वो हाथ में एक लालटेन लेकर मरीजों के पास जाती थी, इसलिए उन्हें द लेडी विद द लैम्प भी कहा गया। उन्होंने दुनिया को बताया कि कई बार दवा से पहले इंसान को देखभाल की जरूरत होती है और यही देखभाल नर्स का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर हम अस्पताल को एक शरीर मान लें तो डॉक्टर उसका मस्तिष्क हो सकता है, लेकिन नर्स उसका दिल होती है, क्योंकि मरीज सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताता है? नर्स के साथ। जब किसी को तेज बुखार होता है, जब कोई ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, जब किसी माँ की गोद में पहली बार उसका बच्चा आता है, या जब कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होता है, हर जगह सबसे पहले जो इंसान खड़ा होता है वो एक नर्स होती है। एक नर्स सिर्फ दवाइयां नहीं देती, वो मरीज को मानसिक ताकत भी देती है। और कई बार अस्पताल में भर्ती व्यक्ति दवा से नहीं, डर से टूट रहा होता है। उसे ये डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो अपने परिवार से दूर ना चला जाए। ऐसे समय में नर्स का एक छोटा सा वाक्य, आप ठीक हो जाएंगे, किसी दवा से कम नहीं होता। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ लाखों नर्सें दिन रात स्वास्थ्य सेवाओं का आधार बनी हुई हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक नर्सें हर जगह मौजूद हैं। ग्रामीण इलाकों में तो कई बार लोग डॉक्टर से पहले नर्स पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वही सबसे पहले उपलब्ध होती है। माँ और बच्चे की देखभाल हो, टीकाकरण अभियान हो, आपातकालीन स्थिति हो या बुजुर्गों की सेवा, हर जगह नर्सें चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हम सलाम करते हैं हमारे देश की और दुनिया भर की नर्सों के हौसले और उनके योगदान को।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट आज का इतिहास की ओर और आपको बताते हैं 12 मई यानी आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ था खास। जानते हैं आज का इतिहास। वर्ष 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। आज के दिन वर्ष 1666 में पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। वर्ष 1689 में इंग्लैंड और हॉलैंड ने लीग ऑफ ऑक्सबर्ग बनाया। वर्ष 1784 में पेरिस समझौता प्रभावी हुआ। वर्ष 1847 में विलियम क्लेटन ने ओडोमीटर का आविष्कार किया। आज ही के दिन वर्ष 1915 में क्रांतिकारी राजबिहारी बोस ने जापानी नौका सानुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा। वर्ष 1965 में इजराइल और पश्चिम जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया। वर्ष 1993 में हिंदी के जाने माने कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ। वर्ष 2002 में आज के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर फिदेल कास्त्रो के साथ बातचीत करने के लिए 5 दिन की यात्रा पर क्यूबा पहुंचे। कास्त्रो की 1959 क्रांति के बाद से क्यूबा की यात्रा करने वाले कार्टर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। वर्ष 2008 में चीन के सिचुआन में भूकंप से 87,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। भूकंप से 3,74,643 लोग घायल हुए। वर्ष 2010 में लीबिया के त्रिपोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट अफ्रीकिया एयरवेज का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 104 लोगों में से 103 लोगों की मौत हो गई। और वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप से 218 लोगों की मौत और 3500 से अधिक लोग घायल हुए। श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1989 में हुआ था। वर्ष 1980 में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता रहे ऋषि सुनक का भी आज जन्मदिन है। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश रहे के जी बालकृष्णन का भी जन्म आज के दिन वर्ष 1945 में हुआ। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता रहे घनश्याम नायक का भी जन्म वर्ष 1944 में आज ही के दिन हुआ। वहीं बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार रही सुचित्रा भट्टाचार्य का निधन वर्ष 2015 में आज ही के दिन हुआ था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले साहित्यकार धनंजय कीर का भी निधन वर्ष 1984 में आज ही के दिन हुआ। तो श्रोताओ, ये था आज का इतिहास। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।

श्रोताओं से गीत के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की दीजिए आज्ञा अपने रेडियो साथी अनिल राजपूत को। आप खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों के साथ रहें।

सुन रहे थे फिल्म संगीत का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को

0: शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।

0: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ज़र मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
0: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के 22 दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
1: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
0: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉ हेमंत बिस्व शर्मा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के 4 अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये 4 काबिनी वजीर हैं, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा।

0: चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिरखा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हस्ब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसिपल्टी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसिपल्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। यह दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान की तजवीज को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादला ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा, जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमित असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
0: ईरान के मुतालिबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों के बजाय जंग के हालात और इक्तसादी सूरतहाल पर मबनी है, जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इक्तसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिजाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहदा अरब अमारात अपनी अहम तनसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में

306.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अरमान मलिक को फिल्म मौसम प्यार के से। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म शिमला मिर्च से मीत ब्रोज और स्टेविन बैन की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना राशिद अली और वसुंधरा दास को फिल्म जाने तू या जाने ना में। कार्यक्रम का अगला गीत है अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। फिल्म का नाम है कलंक।

श्रोता, अभी आपने सुना तनिष्क बागची और ज़ारा खान को फिल्म जुग जुग जियो में। इसी गीत के साथ कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: की हलचल, आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
1: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गयी है। जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यान पूर्वक सुना। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी, स्वशासी।

0: राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण हैं वो हैं बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 284 करोड़ की लागत से यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा कि
4: सन 62 में होमगार्ड के विभाग का गठन हुआ, 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 17 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
3: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती देहमाफी कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्य को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से ADG कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुशेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार।

0: एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के।
2: डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और आत्मसमर्पण की अद्वितीय मिसाल है। डॉक्टर कलाम का जीवन प्रारंभिक दौर में कठिनाइयों से भरा था। वे एक साधारण परिवार से थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अखबार भी बेचे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी शिक्षा में कभी भी समझौता नहीं किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया और इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने भारतीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV तृतीय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम किया और भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति बन गया। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं और जनता से जुड़ने का प्रयास किया। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे शिक्षण और लेखन में सक्रिय रहे। उनकी पुस्तकें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया, जब वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनका जीवन और विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और निरंतर प्रयासरत रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की अनूठी कहानी है, जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरव भारत देश के।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मीडियम वेव

इन बज़्म आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। जो शुराए कराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। हम सभी मेहमानों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले दावत सुखन देते हैं मोहतरम जनाब अहमद नबी साहब को कि वो आएं और इस महफिल को नूर बख्शें।

0: बतला और मुलाजा फरमाएं
1: जी
0: कि दरगुजर कर दिए सितम

0: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात।
1: चाहे आंसू हो या हो गम मेरे,
0: बहुत अच्छा है।
1: और ये भी शेर देख लें कि वो अगर चाहे तो निकल जाए,
0: वो अगर चाहे तो निकल जाए,
1: वो अगर चाहे तो निकल जाए, वरना दुश्वार हैं ये खम मेरे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: वरना दुश्वार हैं ये खम
0: मेरे
1: मेरे, और कैसे दिल से उन्हें निकालूं मैं,
0: कैसे दिल से उन्हें निकालूं।

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: कि दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब
0: दे दिया
1: ने।
0: उसने मुस्कुरा के जवाब।

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: कि अब भला कौन उनको समझाए,
0: अब भला कौन उनको समझाए।

0: क्या बात है, भूल बैठे हैं करम मेरे।
1: कि गैर मुमकिन है प्यार में अहमद,
0: गैर मुमकिन है।

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: पीछे हट जाए अब कदम मेरे।
0: दरगुजर कर दिए सितम मेरे, याद जब आ गए करम मेरे। बहुत ही खूबसूरत अशआर से इस महफिल को रौनक बख्श रहे थे अहमद नबी अहमद बदायूनी। आइए अब एक और शायर जो बदायूं से ही तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद जलीलुद्दीन उर्फ समर बदायूनी को बुलाते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
2: मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमा लें। देख ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे। ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे,
3: अब और क्या
2: दिखाएगी ऐ जिंदगी मुझे। शेर समाप्त फरमाया हजरात, देखें
3: जी।
2: और ये शेर भी समाप्त फरमाया हजरात,
0: जी
2: देखें
0: जी आता
2: कि मेरी हयात क्या थी,
0: मेरी हयात क्या थी,
2: अमावस की रात थी।
0: अमावस की रात थी, क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: मेरी हयात क्या थी,
0: अमावस
2: की रात थी, कुछ जुगनुओं से मिलती रही रोशनी मुझे।
0: क्या बात है,
2: मेरी हयात क्या थी, अमावस की रात।
0: अच्छी मंजर कशी है।
2: मेरी हयात क्या थी,
0: अमावस की रात
2: थी,
0: एक
2: कुछ जुगनुओं से मिलती रही
0: रोशनी
2: मुझे। और एक ये शेर भी देखें हजरात के, जब तक मायने के मुकाबिल नहीं हुआ,
3: जब तक
0: मुकाबिल नहीं हुआ,
2: मायने के
0: मुकाबिल नहीं हुआ,
2: मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे।
0: क्या बात है,
2: जब तक मैं आईने के मुकाबले,
0: बेशक यही बात,
2: जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे। और ये शेर देखें हजरात के, बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
3: बस यूं ही आ गई से
2: मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे। बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे। और ये शेर भी देखें अहमद भाई के, रखता हूं फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। मैं रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। और एक शेर समाप्त फरमाएं हजरात, देखें कि मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम,
0: मेरे जुनूने शौक से थकते नहीं,
2: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी मुझे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है असर साहब, मेरे जुनूने शौक के थकते
0: नहीं कदम,
2: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी।
0: बहुत अच्छा है,
2: दर दर फिराती फिरती है दीवानगी।
0: क्या बात है,
2: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है दीवानगी। मुझे बतौर खास एक शेर हाजिर,
0: जी जी बिल्कुल,
2: फरमाएं कि मुझ में, अच्छा भाई देखें कि मुझ में कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश।
0: मुझमें कोई
2: मुझमें कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश, दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे।
0: वाह वाह।
2: मुझमें कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश
0: जी,
2: दुनिया समझ सकी
0: क्या बात
2: न कभी आदमी मुझे।
0: बहुत अच्छा है।
2: दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे। और मक्ता समाज फरमाने
0: जी जी बताओ
2: कि दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर।
0: दुनिया को मेरी बातों
2: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर, आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
0: बहुत अच्छा है मुकर्रर इरशाद।
2: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों,
0: क्या बात है।
2: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे, और ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे।
0: क्या बात है।
2: अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे।
0: ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ए जिंदगी मुझे। बहुत ही अच्छे अशार से और बहुत ही खूबसूरत लहजे में अपनी बात सामिन तक पहुंचा रहे थे मोहतरम समर बदायूनी साहब। आइए अब एक और मोहतरम शायर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब के हुजूर चलते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
4: गजल का मतलब मुलाजा कीजिए।
0: जी जी आता हूँ।
4: कवाफी कुछ मुश्किल हैं लेकिन आप मफहूम से जी समझ जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मतलब यूं है कि सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का कलक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का कलक छोड़ जाऊंगा। गुल बूटे कह कशानो शफक छोड़ जाऊंगा।
0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
4: गुल बूटे कह कशानो शफक
0: छोड़ जाऊंगा,
4: छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी दास्तां के वरक
0: छोड़ जाऊंगा। क्या बात है।
4: मैं अपनी दास्तां के वरक छोड़ जाऊंगा। दारो

0: हसन की बात मेरे साथ जाएगी।
1: वाह वाह वाह
0: दारो रसन की बात मेरे साथ साथ जाएगी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
0: सच बोलने का दुनिया में हक छोड़ जाऊंगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
0: सच बोलने का दुनिया में हक
1: छोड़
0: जाऊंगा। एक काफिया और देखें।
1: जी जी आता।
0: कि मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
0: मेरा चमन से जाना भी
1: शबनम
0: से कम नहीं। रुख पर हर एक गुल के अरक।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: रुख पर हरे को गुल के अरक
1: छोड़ जाऊंगा
0: गजल का एक शेर।
1: जी जी आता।
0: टूटेगा उनकी आंखों से तारा कभी कभी।
1: क्या बात है,
0: टूटेगा
1: उनकी
0: आंखों से
1: तारा कभी कभी
0: इतनी तो रोशनी की रमक
1: छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है।
0: इतनी तो रोशनी की रमक
1: छोड़ जाऊंगा
0: मेरा ही जिक्र मेरी ही बात मेरी ही याद।
2: वाह वाह,
3: क्या कहने
0: मेरा

0: दिन रात ये तुम्हारा सबक
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: जाऊंगा, दिन रात ये तुम्हारा सबक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा, कैसे छुपा सकेगा वो असरार मेरा खून,
1: कैसे छुड़ा सकेगा,
0: कैसे छुपा
1: छुपा सकेगा
0: सकेगा वो असरार
1: मेरा खून।
0: मेरा खून, कातिल की आंखों में भी अलक
1: छोड़
0: छोड़
1: जाऊंगा, बहुत अच्छा है, वाह वाह
2: वाह वाह वाह,
0: कातिल की आंखों में भी अलक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा, मेरा चमन से जाना भी शबनम से
1: कम नहीं।
0: कम नहीं, रुख पर हरे को गुल के अरक छोड़
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत
2: जाऊंगा।
1: अच्छा। सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूबने का खलक छोड़ जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत अशआर से और बहुत ही अच्छे लहजे में अपनी बात हमारे सामीन तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद असरार खां, असरार नसीमी। अब ये महफिल अपने अख्तिताम को पहुंचती है। इसमें जो शोराए किराम शामिल थे उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी साहब, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां, असरार नसीमी साहब। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
3: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विनय अग्रवाल का सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे हैं निसार हुसैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विनय अग्रवाल का सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे थे निसार हुसैन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म कुदरत का कानून से लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद यूसुफ, अलीशा सिद्दीकी, शकील, सलीम, फहीम और यासीन अंसारी। सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम, अकरम और आसमा। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। किदवई नगर एटा से जमील अख्तर, रेशमा यास्मीन, अदीबा जमील, बुशरा और आसरा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, वसीम अकरम, सोनम और मियां कुरेशी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है फिल्म कुदरत का कानून का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दीवाना मस्ताना से उदित नारायण, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाहड़कर, एकांश गवाहड़कर। बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाहड़कर, श्वेता सुमित गवाहड़कर। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, पूजा, स्वाति, मालती, गणेश कार्तिक खर्चे और संजना परी खर्चे। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट और कृष्णा केवट। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, बीके, कैलाश, रामा और आरएसपुरी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है फिल्म दीवाना मस्ताना का ये गीत उदित नारायण, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध थे, आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुना चाहा है छत्रपति सामाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये। जातुका किशनपुर से आलम दिलका, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। बरेली से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुन्निशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। गांव चौहलदा बागपत से संजय टिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी काव्या और भाई सुच्चा पाठक। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल को फिल्म देशवासी के इस गीत में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
1: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी,
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहनें क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें।

0: खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं,
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग

0: गई है।
1: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
1: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी।
1: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी, जी।
1: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
0: जी।
1: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
1: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
1: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
1: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
1: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
1: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
1: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों,

0: नमस्कार
1: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
0: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
1: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
0: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
0: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
0: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों

0: उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की कड़ी संख्या 11।

प्रस्तुत है आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध असमी लेखिका इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। रूपांतरकार हैं सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता। निर्देशक हैं कैलाश भूटानी।

इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित दक्षिणी कामरूप की गाथा एक अनूठी और असाधारण अनुभव यात्रा है। तीन विधवाओं के अभिशप्त जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस अनुभव यात्रा में 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने तक का परिवेश दर्शाया गया है। अमरंगा सत्र का भावी गोसाई युवा इंद्रनाथ इन तीनों विधवाओं का एकमात्र

रहा है। इन विधवाओं में एक उसकी छोटी बहन है, दूसरी उसकी बुआ और तीसरी उसकी चाची है। धारावाहिक में एक ओर जहां इन युवा विधवाओं की वेदनाओं को दिखाया गया है, वहीं सत्र के अधिकारियों के विलासपूर्ण जीवन और तड़क भड़क वाले जीवन के पतन को भी चित्रित किया गया है। असमी परिवेश, मार्मिक संवाद और दिलचस्प घटनाक्रम धारावाहिक को जीवंतता प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दक्षिणी कामरूप की गाथा की 11वीं कड़ी।

0: मेरी ये समझ में नहीं आता कि कितने अफीमची इस अफीम उपचार केंद्र से भाग गए। अभी हिसाब लगाता हूँ।
1: देखो सही सही हिसाब बनाकर एक सूची तैयार कर लो, नहीं तो मंत्री जी पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
0: अरे वही काम तो कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले इन औरतों को पकड़ कर लाया था, इनका नाम भी इसमें नहीं चढ़ाया अभी तक।
1: कहाँ से इन औरतों को पकड़ लाए, जब से आई हैं शोर मचा रखा है। देखो अभी भी कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं।
0: अरे चुप खामोश रहो, चुप। एक तो वैसे ही मंत्री जी के आने से यहाँ हम सब तनाव में हैं, और ऊपर से इन अफीमचियों के भागने की गड़बड़।
2: अरे तो ऐसी मोटी हो रही है जैसे चावल की गठरी हो। कहीं कुछ अपने मुंह की चूहेदानी बंद रख, ज्यादा मत बोल। हर कोई तेरे खजम के बारे में जानता है, पुलिस उसके पीछे लगी है। अरे मुझे सब मालूम है किसका टाका कहाँ फिरा है, एक एक घर की खबर रखती हूँ, समझी। अब मेरे मुंह से ज्यादा कुछ ना बुलवा, कौन आदमी और औरत का गा मुँह मारता है मुझे सब पता है। सब पता है तो थे हमारी बला से। अरे इलाज कराने आई है तो अपना सीधे तरीके से इलाज करा ले। अफीम थी कहीं की,
3: वो ही अफीम।
0: तुम में से अब अगर एक भी औरत की आवाज आई तो इस कोठरी में बंद कर दूंगा। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम लोगों की बकर बकर, समझी। चलो उठो यहाँ से। शांति तुम वहाँ जाकर बैठो, तुमने सबसे ज्यादा अशांति फैला रखी है।
2: अरे ओमकार जी, मैं तो शांति बैठी थी, इसी ने मुझे उकसाया। अरे जा जा, देखा है तुझे बड़े आई शांत रहने वाले।
0: अब और ज्यादा नहीं, मैं तुम लोगों की चिक चिक नहीं सुनना चाहता बिल्कुल भी। अरे कुछ तो इस सत्र के बारे में सोच लिया करो। अफीम पीते पीते तुम लोगों की अकल बिल्कुल खाली हो गई है क्या?
2: होमगार्ड जी, जनान खाने से निकलो और देखो वाह शायद कोई आया है। जाओ जाओ
0: जाओ। हाँ जाता हूँ।
4: अरे होमगार्ड बाबू, तुम जनान खाने में ही घुसे रहते हो, कुछ और भी काम वाम करते हो या नहीं?
0: अरे नहीं नहीं पुजारी जी, ये औरतें अभी जनान खाने में आई हैं, बहुत शोर मचा रही थी, उन्हीं को ठीक करने गया था।
4: अफीम ची है क्या?
0: जी पुजारी जी अफीम ची है, ठीक कराने के लिए ही उन्हें उपचार केंद्र में लाया हूँ।
4: अच्छा अच्छा।
0: हाँ आइए पुजारी जी, मैंने यहाँ हुक्का लगा रखा है, आप इधर कुर्सी पर बैठिए।
4: अच्छा ये बताओ कि अभी अफीम निषेध अधिकारी साहब यहाँ आए हैं कि नहीं?
0: नहीं नहीं, बस मालिक पहुँचने ही वाले होंगे।
5: प्रणाम पुजारी जी।
4: अरे आओ भाई आओ अधिकारी साहब, अब आप ही की बात चल रही थी।
5: भाई यहाँ की हालत तो अब काफी सुधरी हुई लग रही है, काफी लोग आ गए हैं यहाँ उपचार केंद्र में।
4: अरे क्या बताएं अधिकारी बाबू, लोगों में अफीम की लत कम नहीं हुई है बल्कि अब बहुत बढ़ गई है, इसलिए यहाँ देखो लोगों में कितनी बढ़ोतरी हो गई है।
5: पुजारी जी ये हाल केवल आपके सत्र का नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी तट में यही हाल है, सभी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं।
4: अरे क्या होगा अब इस सत्र का, मुझे तो बहुत चिंता लगी रहती है, अगर ऐसा रहा तो निकट भविष्य में शायद हम भी ना बच सकें।
5: अरे नहीं नहीं पुजारी जी, आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने अफीम के खिलाफ ऐसे सख्त कानून बनाए हैं कि अब कोई बचने वाला नहीं है। अब देखिए ना, जब उत्पादन

0: जागरूकता में कमी आएगी तभी पीने में कमी होगी और धीरे धीरे यहाँ की हालत भी सुधर जाएगी।
1: वैसे अधिकारी जी आप तो काफी इतिहास जानते हैं, ये बताओ कि यहाँ अफीम आई कैसे?
0: देखिए पुजारी जी, हुआ यूँ कि इसमें सबके अलग अलग मत हैं कि अफीम कहाँ से आई। अब मेरी जानकारी के अनुसार मोहम्मद गौरी के जमाने में बंगाल के शासक बख्तियार खिलजी ने कामरूप पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे परास्त होना पड़ा था। बस यही लोग आक्रमण के जरिए अफीम लाए थे।
2: गलत, बिल्कुल गलत बात ये नहीं है जो आप बता रहे हैं।
1: सुनो, ये कौन है?
3: जी ये इस गांव से थोड़ी दूरी पर मास्टर हैं। अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं।
2: अरे जगलिया के तट पर पहले पहल अफीम लाने वाले बर्मा के लोग थे, जिन्होंने दिसंबर 1821 में 300 सैनिकों के साथ चंद्रकांता की छावनी पर हमला किया था। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और बचने के लिए इधर उधर गांवों में छिप गए। बस उन्हीं के जरिए ये अफीम यहाँ तक फैली।
1: अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? कौन आग जला रहा है?
3: लगता है मार्ग बाबू आग लगा रहे हैं। उन्होंने अफीमचियों को उनका छोटा मोटा सामान जलाने की धमकी दी थी। वो देखिए मार्ग बाबू आ गए।
1: बहुत अच्छे मार्ग बाबू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कहो तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा?
0: बस पुजारी जी, चल रहा है।
1: है? क्या बात है मार्ग बाबू, कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं। लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: अरे सुनो, कोई मार्ग बाबू को उनके घर तक छोड़ो।
0: जी अच्छा पुजारी जी, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी चलता हूँ। मैं भी एक बार केंद्र को और देख लूँ, मंत्री जी इधर भी आएंगे तो उनसे पहले मैं भी एक निगाह मार लूँ।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर।
0: अच्छा पुजारी जी, पुजारी जी मैं अकेले ही चला जाऊंगा, मुझे घर नहीं कहीं और जाना।
1: चलिए मार्ग बाबू, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही कह रहा था।
0: जी धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूँ।
1: अच्छा देखा मास्टर जी, हमारे मार्ग बाबू का हाल।
4: जी
1: ये आपके गांव का भी इतिहास रच रहे हैं।
4: जी
1: हाँ, आपका गांव भी तो हमारे सत्र में आता है।
4: क्यों नहीं पुजारी जी, आप सही कहते हो। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, लगता है आज मार्ग बाबू बहुत थक गए।
1: मास्टर जी अंदर की बात तो केवल हमें पता है, मार्क बाबू को पांडुलिपि नहीं कुछ और खाया जा रहा है।
4: क्या?
1: गिरी बाला की ससुराल से कुछ लोग उसे ले जाने के लिए आने वाले हैं।
4: हाँ ये तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी हालत दुर्गा जैसी हो जाती। देखा नहीं किन परिस्थितियों में उसे गुसाई की हवेली से बाहर फेंका गया।
1: ये तो बड़ा अनर्थ हुआ था। लेकिन मास्टर जी मालूम है मार्क बाबू और गिरी बाला को लेकर बड़े गुसाई क्या सोचते हैं?
4: क्या सोचते हैं?
1: मास्टर जी ये सब कुछ इंद्रनाथ के कारण हुआ है। उसने सोचा ये लड़की जीवन भर क्या करेगी, इसे पांडुलिपि में खोए रहने दो। गिरी बाला बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि की लड़की है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि किसी लड़की में इतनी बुद्धि का होना किस काम का है, इससे तो परिवार के नाम पर बट्टा ही लगता है।
4: क्या बट्टा लगता है, क्या कह रहे हैं पुजारी जी, वो कैसे परिवार के नाम पर बट्टा लगा सकती है, मैं नहीं मानता।
1: तुम देखना मास्टर जी, वो परिवार के नाम पर जरूर बट्टा लगाएगी। उधर जब गिरी बाला के ससुराल वालों को ये पता चला कि उनकी बहू गिरी बाला का संबंध किसी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने फौरन दो आदमी भेजे और कहा कि उस गिरी बाला को जबरदस्ती घसीटते हुए यहाँ ले आओ।
4: सुना है इंद्रनाथ सन्यासी हो चला है?
1: अरे नहीं नहीं, उसके ऊपर कई प्रकार के बोझ हैं। उसकी मारा भीटा की जमीन, क्रांतिकारियों का विरोध व उसकी अपनी प्रतिष्ठा और इलीमन का।
4: क्या? इलीमन का क्या?
1: इलीमन का भी तो अब उसे ही सोचना है। पता नहीं एक दिन इलीमन ने उसके घर में रहने वाली बुढ़िया को इंद्रनाथ से बात करने भेजा था, क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन मामला कुछ था जरूर।
4: क्या मामला?

0: हो सकता है।
1: अरे विवाह का और क्या, सुना है क्या वो कूची बिहार का अफीम की 20,000 काट के आने वाला है। इंद्रनाथ की एक परेशानी ये भी है।
0: वो कैसे?
1: शायद इंद्रनाथ इलीमन से
2: विवाह।
3: इंद्रनाथ बाबू आप,
2: मास्टर जी वो ये वो

0: उदास हूं मैं, क्यों उदास हूं? गिरीबाला के ससुराल वालों के बंगरा को सही के आने से आज मेरा मन क्यों पीड़ित हो रहा है? आज क्यों ऐसा एहसास हो रहा है मानो मुझसे कुछ छीना जा रहा है? ओ गॉड, क्राइस्ट, मेरी मदद करो। मैं क्यों अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं? मेरे अंदर कैसी पीड़ा हो रही है, कैसा द्वंद चल रहा है। एक और, उफ, क्या करूं, किस ओर जाऊं, अपनी त्रासदी को किसके आगे कहूं? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। जी चाहता है अभी सब छोड़कर चला जाऊं। मेरी सारी मेहनत, सारा अनुसंधान, जीवन का ज्ञान सब बेकार हो गया। सब बेकार है ये। बस अब ये मार्ग चला जाएगा यहां से हमेशा के लिए। गिरीबाला, तुम
1: जरा दरवाजा बंद कर दो, अंदर बरसात आ रही है, सब कुछ भीग जाएगा।
0: भीग जाएगा? गिरीबाला, तुम यहां से चली जाओ, वरना वरना वरना अर्थ हो जाएगा।
1: ये क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हो, मैं ही बंद कर देती हूँ। जरा मुंह पीछे कर लो, मैं अपने कपड़े ठीक कर लूँ, वो पानी में बुरी तरह भीग चुके हैं ना।
0: ये कैसा द्वंद मेरे अंदर पैदा हो गया, कैसा अद्भुत दृश्य है ये। अपने पीके बालों को वो सुखा रही है, मेरी आंखों के सामने उसने अपने कपड़े, नहीं, मैं और नहीं देख सकता।
1: क्या हुआ मार्क, तुम इतना घबरा क्यों गए? बिजली तो बरसात में कड़कती ही है।
0: गिरीबाला, बस अब बहुत हो गया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा हूं।
1: क्या मुझे घर छोड़कर आओगे तुम?
0: हाँ, मैं तुम्हारे मन की हालत बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, और ये भी बहुत स्पष्ट है कि
1: नहीं, मुझे अब जाने की कोई लालसा नहीं है।
0: नहीं गिरीबाला, मैं अब तुम्हें छोड़कर ही आऊंगा।
1: मार्क, तुम्हें मालूम है मेरे ससुर ने दो आदमियों को मुझे लिवा लाने के लिए भेजा, लेकिन मैं अब उस गांव में कभी लौट कर नहीं जाऊंगी। मैं उस कब्रिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे वो जिंदा दफना दे।
0: ये गिरीबाला और विधवाओं से कितनी अलग है। यहां की विधवाओं ने अपना सारा जीवन चार दीवारी के भीतर ही बिता दिया, बाहर सड़क पर

0: झांक कर भी नहीं देगा। ये विधवाएं जो समाज की प्रताड़ना के डर से मामूली सा पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाई, आज इन्हीं सब विधवाओं से अलग ये गिरीबाला।
1: क्या हुआ मार्क, क्या सोचने लगे?
0: नहीं कुछ नहीं,
1: मेरी नियति के बारे में सोच रहे थे ना मार्क।
0: गिरीबाला मुझे मत छुओ।
1: मेरा पति उस अफीमची औरत के पास जाता था, उस अफीमची औरत में ऐसा क्या था मार्क जो मुझ में नहीं है? मैं क्यों अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती? मुझे वो कहते थे वो अफीमची होते हुए भी तुमसे कहीं ज्यादा कामुकता लिए है, और मैं उसकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ।
0: गिरीबाला
1: मार्क, तुम मुझे अपने पास उसे सांत्वना क्यों नहीं देते मार्क? मार्क मार्क मार्क मुझे अपने आलिंगन में पालो मार्क। तुमने मेरा यही साया हर जगह देखा है, और तुम्हारे भीतर भी यही साया है क्या?
0: गिरीबाला
1: मार्क, मैंने कभी अपने पति को ना शरीर से चाहा और ना मन से। अगर मैंने किसी से प्रेम किया है तो तुमसे मार्क, केवल तुमसे। मेरे प्राण प्यारे साहिब, मेरा स्पर्श करो, मेरा स्पर्श करो, और एक बार केवल एक बार उसे उसे अनुभव करो मार्क, उसे अनुभव करो, अनुभव करो मार्क, उसे अनुभव
2: करो। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे इसकी जान से, अरे ये भोली भाली को हराई लड़की को पथभ्रष्ट किया है। अरे देखो देखो इसकी मेखला और गताला एक और पड़ी हुई है, इसने इस लड़की का धर्म भ्रष्ट किया है। अरे अरे बांधो इसे यहीं पर, इसे गला हम देंगे।
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे
4: बांधो इसे।
3: अरे मैंने कुछ नहीं किया,
1: अरे मैंने कुछ नहीं किया है।
2: नहीं नहीं
1: कुछ नहीं किया है, ये बहुत शरीफ आदमी है।
2: अरे रहने दो,

0: देखो बेटा थोड़ी गिला के हमारे हाथ, ये उठा के देना जरा, ये उठा के हाथ,
1: झोपड़ी बनाने के लिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना समय नहीं है कि अब कुछ किया जा सके। अरे बड़ा गोसाई तीर्थ यात्रा पर गया हुआ है और इंद्रनाथ उस भूत के डेरे मारा भीटा से लौटा नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है।
2: अरे इस गोरे साहब ने इसे भ्रष्ट बना दिया है, अब गोसाइन इसे हवेली में नहीं घुसने देगी।
3: अरे कौन जानता था ये गोरा सन्यासी स्त्री गमन शुरू कर देगा।
1: अरे अरे अरे यहाँ खड़े मत रहो, जाओ जल्दी बांस और लकड़ियाँ लेकर आओ, हम एक तीर से दो निशाने साधेंगे। हाँ, इस झोपड़ी में बकरी की बलि से पहले गिरीबाला का शुद्धिकरण हो सके और गिरीबाला शुद्ध होकर हवेली जा सके, हमें यही उपाय करना है। अरे अरे जल्दी झोपड़ी को बना दो ताकि विधि आरंभ की जा सके, अगर गोसाई आ गए तो काम में बहुत देरी हो जाएगी।
4: अरे पुजारी जी आज कुछ ही देरी है, समझ गया काम हो गया।
2: अरे
4: सही सही, पुजारी जी बकरी भी आ गई और झोपड़ी भी तैयार हो गई, अब जो चाहे आप कर लीजिए।
1: ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसा करो बकरी को वहाँ पेड़ के नीचे बांध दो
5: जी,
1: और गिरीबाला से कहो कि वो झोपड़ी के अंदर प्रवेश करे।
5: जी पुजारी जी। मालकिन पुजारी जी की आज्ञा है कि आप इस झोपड़ी में प्रवेश करें और पुजारी जी के कहे अनुसार

0: चले, जब वो आपको बाहर आने की आज्ञा दे तो बाहर आ जाइए। अरे अरे, बड़ी अजीब बात है, बिना कुछ कहे सुने ही झोपड़ी में चली गई।
1: ठीक है, अब गिरिबाला का प्रवेश झोपड़ी में हो चुका है, अब मैं अपनी क्रिया आरंभ करता हूँ।
0: ठीक है जी।
2: ओम रीम क्रीम चामुंडाए मिचे।
3: शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। क्या जमाना आ गया है, हमने तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मार्क बाबू भी ऐसा कर सकते हैं।
0: हाँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन
3: लेकिन क्या,
0: फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ठीक है या केवल भ्रम। पता नहीं क्यों मार्क।
3: अरे अब और क्या देखोगे, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से ही तो देखा है, फिर क्यों इस दुविधा में पड़ रहे हो।
0: एक बार, कम से कम एक बार मार्क से तो पूछ लिया होता, अगर वो भी नहीं तो गिरिबाला से ही पूछ लेते। देखा नहीं कैसे सुन पड़ गए दोनों।
3: अरे गलती पर हैं, इसीलिए तो सुन पड़ गए हैं, नहीं तो क्या ऐसे किसी आदमी को तुमने देखा है जिसने गलती ना की हो और चुपचाप सहता रहे।
0: चुप रहने का कारण कुछ और भी तो हो सकता है।
3: क्या कारण हो सकता है, मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता।
0: कोई जरूरी नहीं कि जो कारण हो वही नजर आए, बहुत कुछ ऐसा भी तो होता है जो नजर नहीं आता।
3: अरे पहेलियां मत पूछो और सीधी सीधी बात करो।
0: मार्क केवल इसलिए चुप बैठा है कि उसे गिरिबाला की इज्जत का ख्याल है, उसके शील को वो बोलकर भंग नहीं करना चाहता।
3: लेकिन
0: बात पूरी सुनो, उसके बाद कुछ बोलना। और गिरिबाला इसलिए चुप है कि वो समाज और गुसाई परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं कर सकती, और मार्क भी यही चाहता है।
3: मार्क क्यों ऐसा चाहेगा?
0: तुम्हें शायद पता नहीं कि मार्क का नैतिक स्तर गोसाइन के करीब नहीं पटकता था, अपनी परछाई तक उन पर नहीं पड़ने देता था। अच्छा। क्योंकि गोसाइन की धार्मिक भावनाओं को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने गोसाइन परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा है, ये बात मुझे ही नहीं बल्कि पूरे गाँव को पता है। तुम्हें नहीं पता है क्या?
3: जब इतना सब कुछ मार्क में है तो फिर ये सब क्या है?
0: यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर ऐसा होता तो शायद ये सब कुछ पहले ही हो जाता, क्योंकि गिरिबाला मार्क के साथ ऐसे वीरान स्थानों पर गई जहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते थे, तो फिर ये तो
3: अब जो हो गया वो गया। पुजारी जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, वो गलत नहीं कर रहे हैं, हमें तो अब बस उनका अनुकरण ही करना है।
0: हाँ, अनुकरण ही तो कर रहे हैं, इसलिए मार्क को भी हम सब खरी खोटी सुना रहे। चलो होने दो, चलने दो, जो चल रहा है।
2: ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे।
1: चलो जी, अब सारी क्रिया पूरी हो गई। गिरिबाला, अब तुम झोपड़ी से बाहर आ जाओ, तुम्हारा शुद्धिकरण हो चुका है, अब तुम आराम से हवेली जा सकती हो। गिरिबाला, मैं कह रहा हूँ कि तुम अब बाहर आ जाओ, तुम्हारे बाहर आने पर यह झोपड़ी जला दी जाएगी। और देखो, बंगरा से तुम्हारे ससुराल के लोग भी आए हुए हैं, उन्होंने उसके साथ तुम्हारे कुकर्म के बारे में सुन लिया है।
4: ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगी, लेकिन पहले इस झोपड़ी में आग लगा दो।
5: अरे गिरिबाला, गिरिबाला पहले तुम बाहर आ जाओ।
6: ठीक है जी, मैं आग लगा देता हूँ झोपड़ी में। अरे
5: जल्दी
6: मैंने आग लगा दी।
5: अरे गिरिबाला जल्दी से बाहर आ जाओ, झोपड़ी में आग लगा दी गई है।
1: निकालो, अरे वरना मैं गुसाई परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा।
6: अरे बाहर निकालो, बाहर आइए मालकिन, आप बहुत जल्दी से बाहर आइए। अरे गिरिबाला को आग लग गई। अरे गिरिबाला को कोई बचाओ।
7: तुम बाहर नहीं आओगे, तुमने क्या किया गिरिबाला? मुझे मालूम था गिरिबाला कि तुम बाहर नहीं आओगी, तुम्ही ने कहा था कि मैं जिंदा कब्र में दफन नहीं होना चाहती गिरिबाला।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की 11वीं कड़ी। मूल लेखिका इंदिरा गोस्वामी, रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता, निर्देशक कैलाश भूटानी, संगीत दिया है टिन्नू ने, ध्वनि मुद्रण राजेंद्र नाथ। भाग लेने वाले कलाकार हैं सुचित्रा गुप्ता, कुमकुम जैन, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, बीएल टंडन, कमल साथी, एसके बत्रा, संदीप शर्मा और हर्ष बाला। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे दक्षिणी कामरूप की गाथा की अगली कड़ी में।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की कड़ी संख्या 11।
2: अरे अरे सुनो, देखो देखो, एक्सीडेंट हो गया।
3: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
4: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
5: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
4: नहीं, 112 लगाओ।
6: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
4: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
7: हेलो 112।
8: नमस्कार 112 यूपी।
7: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है,
8: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
7: सुनील।
8: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
7: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
8: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है, डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
9: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। एसएमएस करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।
10: पानी, पानी
11: कहाँ से लाऊं? पानी,
10: पानी
11: एक बूंद भी पानी नसीब
10: पानी,
11: नहीं
10: पानी।
11: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
10: पानी, पानी।
12: ये तस्वीर है आने वाले कल की,
10: पानी।
12: अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

मिडी वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित गीत।

लाल मोहम्मद जी कहते हैं, आँखों में नमी मगर दिल में जज्बात दे जाना, दिल ना सही अपनी एक याद दे जाना, मिलकर बिछड़ना तो रिवाज है दुनिया का, दूर होकर भी पास होने का एहसास दे जाना। दूरियां का मतलब जुदाई नहीं होता, कोई भी इंसान कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर अपनापन होता है या वो आपको अपना समझता है तो एक दूसरे से मोहब्बत बनी रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मुलाकात होती रहे, ज़रूरी ये होता है एक दूसरे से संपर्क बना रहे, एक दूसरे से बातों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, दूरियों का एहसास नहीं होना चाहिए। ये दस्तूर है जमाने का, जो मिलता है वो बिछड़ता भी है, मगर बिछड़कर याद

रखना बहुत जरूरी होता है। हमें चाहिए कि किसी से विदाई लेते समय, किसी भी बिछड़ते समय सामने आने वाली एक निशानी जरूर देनी होती है। हमें चाहिए कि किसी की विदाई हो और यादें हो तो वो जो निशानी देता है ताकि उसे यादों को और बातों का सिलसिला जारी रहे। कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, दूरियों का एहसास नहीं होना चाहिए। दूरियों की परवाह मत कीजिए, दिल जब भी चाहे बुला लीजिए। हम ज़्यादा दूर नहीं हैं आपसे, बस आपकी आँखों को पलकों से मिला लीजिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भवन और आप आज को हम आज सुनवा रहे हैं श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित गीत। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खां, सिमरन खां, शहनवाज बाबू अंसारी कहते हैं, मालूम नहीं इंसान हकीकत से क्यों इतना घबराता है और खुशियों की तरफ दौड़ता है। हालांकि हकीकत में ही दायमी खुशी का राज पोशीदा है। तुमने कभी किसी फूल को देखा है जो

तेज और नुकीले कांटों में रहकर भी कितनी जिंदा दिली से मुस्कुराता रहता है, लेकिन यूं ही उसे इन कांटों से जुदा किया जाता है तो वो किसी हसीना के नरम नाजुक हाथ लमस भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कि यही हकीकत है? जिस तरह फूल हकीकत को तस्लीम करते हुए खुश खुर्राम रहता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान गमों और मुसीबतों में खुश क्यों नहीं रह सकता? शायद इंसान सारी जिंदगी सैराब के पीछे भागता रहता है, उसमें हकीकत का सामना करने का हौसला नहीं होता। अगर इंसान दुखों को बर्दाश्त करना सीख ले तो वो उस खुशी को पा लेगा जो कभी ना खत्म होने वाली है और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहेगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर लेना।

राजद्वारा कोठी अफसराला रामपुर से रुमा खान, बाबी खां, सुभान, मदीहा, गुलफशा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी, शमा परवीन कहते हैं, अपने बड़ों का अदब है ज़रूरी, इनके बिना हर दूर

हुआ है अधूरी। तजुर्बा इनका जीवन का सार है, इनके साई में ही घर का प्यार है। झुक कर करो तुम उनको सलाम, बन जाएगा तुम्हारा हर बिगड़ा काम। जो बड़ों का मान बढ़ाता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत पाता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और इस कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित गीत। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं यह अगला गीत जिसे लिखा है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुला अंसारी, और ये लिखते हैं, मेरी ज़िंदगी की कुछ बिखरी हुई यादें, अब ना वो महफिल रही, ना वो पुराने दिन रहे, ना वो लोग वैसे रहे, ना हम पहले जैसे रहे, वो दोस्त भी बदल गए, ना मिलने की जगह है रही, बस कुछ पुरानी यादें और दिल में उदासियां रहीं, सारी ज़िंदगी उसके शहर में हम अजनबी ही रहे, सब कुछ दे कर भी आखिर हमारे पास गम ही रहे।
1: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए ओ देने ओ

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाऊं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की

0: के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना बबराला जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि गुलवहार पत्नी नसरुद्दीन शाह निवासी बाघव के घेर हाल पता मोहल्ला यादवान चक्की के सामने कस्बा बबराला जनपद संभल विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता है, जिनकी उम्र 24 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, थोड़ी पर चोट का निशान, गुलाबी रंग का सूट और गोल्डन ट्राउजर पहना है, पैरों में पतले गोल्डन कलर के सैंडल पहने हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक बबराला जिला संभल। प्रभारी निरीक्षक थाना कुठ फतेहगढ़ जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि अनेक पाल शर्मा उम्र करीब 56 वर्ष निवासी ग्राम भगतपुर पहली थाना कुथा फतेहगढ़ जिला संभल विगत 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनका रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 6 इंच

0: रंग सांवला, सिर के बड़े बाल, सिर पर लाल गमछा, हरे रंग की टी शर्ट पहनी है, हल्की काले रंग की पैंट व जूते पहने हुए हैं तथा नीले रंग का बैग है उनके पास। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया इस नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर है 7292055671 तथा थाना कुथा फतेहगढ़ जनपद संभल को भी सूचित करें।
1: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: Say no to plastic।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाए।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के अनुरोध पर कार्यक्रम गीत आपके नाम।

आप सभी श्रोताओं को दीक्षा कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब खूब कुशल मंगल होंगे। तो कार्यक्रम में यह पहला गीत सुनने की फरमाइश की है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू ने। इन्हीं के साथ ये गीत सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। मेन रोड तिलहरा से ये गीत सुनना चाहा है प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील, साहिल, अंश और कुमारी सुजाता पोहरकार ने।

वार्ड नंबर एक पोपाली जिला यत्मावले से इस गीत को सुनना चाहते हैं जयराम सिंह हड़कर, दिशांत कुमार सिंह हड़कर और अर्पिता। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म जाने तू या जाने ना से।

अगला गीत सुने की फरमाइश की है अमरोहा, नई बस्ती पतेई खालसा से, बरा बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फ़हीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। इन सभी के साथ जिन्होंने सुनना चाहा वह हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर।

मीन्स एकांश गवड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवड़कर, प्रणेता गवड़कर, लाडला टुक टुक गवड़कर ने, बहादुरा नागपुर आकार हाइट से सुनना चाहा है, श्रीमती वैशाली शैलेश गवड़कर, श्वेता सुनीत सुमित गवड़कर, कुमारी ध्वनि गवड़कर परी ने। पंडित नगला बाईपास को ही नुड़ते रहा के पास से इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म कभी अलविदा ना कहना से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अगला गीत सुनने की फरमाइश की है गांव व डाकघर निमानाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल प्रियांश ऋषि और पायल वर्मा ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी भाऊ मराठा गणेश दादा मराठा कार्तिक भाऊ मराठा परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है कभी अलविदा ना कहना फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। तो कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश की है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वे गीत है हम आपके हैं कौन फिल्म से लता मंगेशकर एसपी सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, let's start the fun.

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जलारामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रुमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और अंश गौतम ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, और बुलंदशहर से सुनना चाहते हैं बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर इस गीत को सुनना चाहते हैं लुधियाना पंजाब से। यह गीत है फिल्म हे बेबी से सलीम शहजादा, रिहान खान, साजिद खान और शंकर महादेवन की आवाज़ों में।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश की है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी ने। एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड।

इस गीत को सुनना चाहते हैं। वंदना नगर इंदौर से इस गीत को सुनना चाहा है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खड़चे, ललिता नारायण खड़चे और कुमारी देविका चौधरी। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म हलचल से शान और साधना सरगम की आवाज़ों में।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम गीत आपके नाम को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपने साथी दीक्षा कुलश्रेष्ठ को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी

0: कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम परिवार जगत। 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आज शाम कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं शाम 5:15 पर। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं प्रसारित होंगी शाम 6:05 पर। 6:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:20 जिसमें वार्ता होगी सिंचाई

के आधुनिक तरीके अपनाइए। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और भेंटवार्ता होगी, हरी खाद क्यों उगाएं? कानून और हम कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। कलाकार होंगे सुरेश वाडकर। गीत गाते चल कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8 बजे। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज के मेहमान, विषय होगा इमारतें बोलती हैं, डॉक्टर पुष्कर मिश्र। गीतांजलि कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10:30। यह था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
2: मिडवेव 336.37 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने को है। अब आकाशवाणी
3: लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाजों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी जराए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वजीर आजम ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता।

0: क्या जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: वजीर आजम ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
0: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है, खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में यह जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजराए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद सीआईआई सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ्फुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इसलाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाजो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे, जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर इज़िला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरकी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

0: श्रोताओं आदाब और नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम परिवार जगत और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आयशा अनवार।
1: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं

0: जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, समय नियोजन यानी कि टाइम मैनेजमेंट।
1: बिल्कुल प्रेरणा, कहा भी गया है समय और अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है।
0: सही कहा आपने आयशा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता, जबकि सच यह है कि सबको बराबर समय मिलता है, फर्क सिर्फ उसके योग का उपयोग का है।
1: जी हाँ प्रेरणा, यदि हम अपने दिन की सही योजना बना लें तो पढ़ाई क्या, काम, परिवार और आराम सबके लिए समय बराबर से निकाला जा सकता है।
0: समय नियोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे तनाव कम होता है और काम समय पर पूरे होते हैं। जब हम बिना योजना के काम करते हैं तो जल्दबाजी, घबराहट और गलतियां बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए तो समय नियोजन बहुत ही जरूरी है। यदि बच्चे पढ़ाई, खेल और आराम का सही समय तय कर ले तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।
0: और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, गृहिणी, नौकरी पेशा व्यक्ति, किसान, व्यापारी, हर किसी के जीवन में समय का महत्व है। एक गृहिणी यदि समय का सही उपयोग करे तो घर के अनेक कार्य पूरे कर सकती है।
1: सही कहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि समय नियोजन कैसे किया जाए।
0: इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें अपनाई जा सकती हैं, जैसे सुबह उठकर दिन भर के कार्यों की सूची बनाना, जरूरी काम पहले करना, मोबाइल और सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय कम देना।
1: साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही समय का सही उपयोग कर सकते हैं।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने आशा। दरअसल समय एक ऐसी पूंजी है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती।
1: इसलिए हमें हर पल की कीमत समझनी चाहिए और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए।
0: समय नियोजन केवल हमारे कार्यों को व्यवस्थित ही नहीं करता, बल्कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल प्रेरणा, अक्सर व्यस्त जीवन में लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि समय रहते जागरूकता होना और उन सभी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है।
0: कई गंभीर बीमारियों से बचाव हो सकता है अगर हम समय का सदुपयोग करें अपने स्वास्थ्य के लिए।
1: इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब प्रस्तुत है एक विशेष वार्ता, सर्वाइकल कैंसर, डर नहीं जागरूकता जरूरी, और वार्ताकार हैं राखी गंगवार। तो आइए सुनते हैं ये एक जरूरी जानकारी और समझते हैं कि सही समय पर जागरूकता और सावधानी किस प्रकार जीवन की रक्षा कर सकती है।
2: नमस्कार, मैं राखी गंगवार और आज हम लोग आकाशवाणी पर परिवार जगत से रिलेटेड एक जो बहुत ही खास टॉपिक है उस पर बात करेंगे कैंसर पर। और ये कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे इस बीमारी से बहुत ज्यादा लोग ग्रसित हो रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लोग चुप्पी साध लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है ये चुप्पी कई बार जानलेवा साबित होती है। भारत में हर साल लगभग 1,20,000 से अधिक महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित होती हैं और करीब 75,000 से 80,000 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। यानी हर मिनट में एक नई मरीज और हर 7 मिनट में एक मौत, कितना बड़ा आंकड़ा है, चौंकाने वाली बात है ना। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, संख्या नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के निचले यानी कि सर्विक्स में होने वाला कैंसर है, जो अचानक नहीं होता बल्कि कई वर्षों में धीरे धीरे विकसित होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है HPV, हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ऐसा वायरस है जिससे ये कैंसर फैलता है। आमतौर पर हम लोग बोलते हैं और ये फैक्ट है कि ये यौन संपर्क में आने से फैलता है और शरीर में लंबे समय तक रहने पर कैंसर का कारण बन सकता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती अवस्था में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है हमारा शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जैसे पीरियड्स के बीच में या बाद में खून आना, संबंध के बाद ब्लीडिंग, असामान्य और बदबूदार डिस्चार्ज, पेट या कमर में लगातार दर्द। और ये जो संकेत हैं ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। आपके घर में, आपके परिवार में, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी आधी आबादी महिलाएं हैं, तो आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनकी सेहत को लेकर शर्म और झिझक क्यों? हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए, परिवार में बैठ

बात करनी चाहिए। अगर आपकी बेटी को पता है तो वो माँ से डिस्कस करे, माता को पता है तो बेटी से करे। और यहाँ पे हमारे जो पुरुष साथी, यानी कि हर परिवार में पुरुष होते हैं, भाई, पति या जो हमारे पड़ोसी हैं ना, अगर उनको बारे में जागरूकता है तो मुझे लगता है अपने पड़ोसियों को जानकारी देनी चाहिए। और अगर आपके रिश्तेदार को ये चीज़ पता है तो रिश्तेदार को भी दूसरे को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है हमारी आधी आबादी यानी कि हमारी महिलाओं का। 9 साल से लेकर 26 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, किशोरी हैं, जो उनको ये वैक्सीनेशन ज़रूर होना चाहिए। और इस समय पे हमारी जो सरकार है वो भी देख रही है कि इतने बड़े जो आंकड़े हमारे भारत में आ रहे हैं इस समय पे सर्वाइकल कैंसर को लेकर, तो उन्होंने क्या किया कि इस वैक्सीन को अब बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। और ये स्कूलों में 14 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि हम इस जानलेवा कैंसर को हरा सकें। जिस तरह से हमने और बहुत सारे वैक्सीनेशन कराए हैं, काला खांसी बोल सकते हैं, पीलिया बोल सकते हैं, या फिर पोलियो हो गया, इन सबको हमने दूर भगाया है ना, उसी तरह से हमें किसी तरह से इस चीज़ पर कंट्रोल करना है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता का विषय है और हमें इस पर बात करनी है, चर्चा करनी है, अवेयर करना है लोगों को। और इसके जगह जगह कैंप लग रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए भी और अवेयरनेस के लिए भी। कई बार हम लोगों को लगता है कि अरे हम ऐसे विषय पर क्यों बात कर रहे हैं, मतलब ये शर्म का विषय है, पुरुष के सामने बोलेंगे तो मजाक बनेगा। अब बस यही एक कारण है जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो इस समस्या से ग्रसित हो जाती हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमें इस तरह की कोई बीमारी हो चुकी है। और अगर हो भी गई है तो वो इसको बहुत हल्के में लेते हैं, वो इसको बीमारी समझते नहीं हैं। और जब लास्ट स्टेज में होते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर बोलता है ना कि अब ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, फिर हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो बस यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी कि इसके लिए हमारी सरकार स्टेप ले रही है, हम लोग खुद जितने भी लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं बहुत सारी, वो आगे आकर बात कर रही हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें इसके बारे में पता है, इसके लक्षण पता हैं, और इस पर लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि अगर 28 दिन के बीच में सपोज 1 तारीख को पीरियड आया, अगर उनका 15वें दिन भी आ जाता है 15 तारीख को, तब भी वो लोग इसको मतलब एकदम कैजुअल ले लेती हैं, वो इसको कोई बीमारी नहीं समझती हैं। तो हमें लोगों को समझाना होगा, बताना होगा और इस चीज़ को फैलाना होगा। और आकाशवाणी ने ये एक जागरूकता का कदम उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि परिवार जगत इसमें इस चीज़ को लेकर आए हैं ये लोग कि हाँ इस विषय पर बात करनी चाहिए, कि सर्वाइकल कैंसर कोई डर या झिझक या शर्म का विषय नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर चुप्पी नहीं, डर नहीं, और जागरूक होना है, जांच करवाना है, क्योंकि स्वस्थ नारी ही सशक्त समाज की पहचान है। अगर हम किसी लड़की से बात करें कि हमारे लिए एक वैक्सीन आई है सर्वाइकल कैंसर की, ये आपको लगवानी है, तो वो डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कुछ हो जाएगा, या हम बीमार हो जाएंगे, या फ्यूचर में हमारे संग कुछ कोई घटना ना घट जाए। तो भाई हम लोगों को इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वैक्सीनेशन कराते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए खसरा की, निमोनिया की, टाइफाइड की, तमाम चीज़ों की, पोलियो सबसे बड़ा उदाहरण है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को, हम लोगों ने इन सब चीज़ों को डिफीट किया है, और ये बचाव के लिए। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू बचा सकते हैं, मतलब बस ये एक ऐसा कैंसर है कि हमने अगर पहले से वैक्सीनेशन करवा रखा है तो इस कैंसर के ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और पहले तो आप लोगों को पैसे खर्च करके लगवाना होता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है सरकारी अस्पतालों में। और इस समय पे सरकार ने जो 14 साल की लड़कियां हैं उनको स्कूल में भी इस वैक्सीन को बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो हम लोग आकाशवाणी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि लड़कियों को ये आप अगर सरकारी संस्थानों से नहीं लगवाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपका मन हो, जो भी कैंसर विशेषज्ञ हैं उनसे लगवा सकते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम महिलाएं, हमारे लिए बोला तो जाता है कि ये हमारी आधी आबादी हैं, हमारा जो भारत देश है वहाँ पे महिला पूजनीय हैं, हमारे देश का नाम है, इसके नाम के आगे माता आता है, लेकिन क्या महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ करना छोड़ा है हमने? किसी महिला को कोई दिक्कत है या किसी बीमारी से जूझ रही है, कभी हम बोलते हैं कि अपना रूटीन चेकअप कराओ? हम तब चेकअप कराने जाते हैं जब डॉक्टर हमको बोलता है कि आप इस चीज़ की जांच कराइए, आपको

0: ये दिक्कत है, जब हमें कोई दिक्कत हो जाती है बट हम प्रिवेंट करना नहीं चाहते उस चीज़ को। अगर आप महिला हैं, आप इसे सुन रही हैं, या आप पुरुष हैं, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिए। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं 35 की उम्र के बाद, उनका हर साल रूटीन चेकअप जरूर करवाइए। अगर उनको कोई छोटी मोटी बीमारी है या इस तरह के कैंसर होने की हल्की फुल्की संभावना है, तो इसको इलाज से सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी एक टेस्ट है, पैप स्मियर टेस्ट। ये जाँच बहुत आसान है, लगभग दर्द रहित है और कुछ ही मिनटों में हो जाती है। ये कैंसर से बनने वाले पहले ही शरीर में जो बदलाव हैं उनको पकड़ लेती है। इसीलिए 30 वर्ष की आयु के बाद हर महिला को नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। जितनी जल्दी पहचान होगी उतना ही इलाज संभव होगा। और जो वैक्सीन है वो HPV वैक्सीन है। वैसे तो ये 9 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र तक आप कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन आपके घर की महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगी है और उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। सपोज आपकी वाइफ हैं, उनकी उम्र 30 साल की, आपकी बिटिया है वो 27 की हो चुकी है, और आप लोग डर रहे हैं, अरे हमारे बच्चों को तो वैक्सीन लग नहीं पाई, मेरी वाइफ को लग नहीं पाई तो मैं क्या करूं? तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलिए और जांच कराइए और उनकी सलाह लीजिए। अगर वो बोलते हैं कि ये वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं तो आप कराइए। और सबसे बड़ी बात ये बोलती हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैंने खुद ये वाला वैक्सीनेशन करवा रखा है अभी 7-8 साल पहले। तब ये फ्री नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं जागरूक थी, मैंने लगवाया। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन हम अकेले तो हर किसी को जागरूक नहीं कर सकते हैं। तो आज मुझे ये माध्यम मिला आकाशवाणी का, और ये जो कार्यक्रम है परिवार जगत, तो मुझे लगता है ये इतना अच्छा कार्यक्रम है कि परिवार की शुरुआत ही होती है बहन बेटियों से, और जो हमारी पत्नी है, हमारी माता है उनसे, तो उनके साथ हम खिलवाड़ क्यों करें? हमें जन्म हमारी माता देती है, हमारी पूरी ज़िंदगी हाथ थाम कर हमारी पत्नी चलती है, और हमारी बहन और हमारी जो बच्चियां हैं वो भविष्य हैं भारत का, तो इनकी सेहत के साथ हम खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आज का टीका कल की सुरक्षा बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे समाज में ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसको हम बीमारी भले ना समझें, लेकिन इसको हम डर समझते हैं कि अगर हमने किसी को बता दिया कि हमें इस तरह का कैंसर हो गया तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, या हम लोगों को बोलेंगे कि हमने इस विषय पर बात कर ली या अपनी लड़कियों से पूछ लिया। नॉर्मल अगर हम मासिक धर्म स्वच्छता पर भी बात करें तो लोग आज भी उसको एक टैबू की तरह मानते हैं कि इस विषय पर ये तो शर्म और झिझक का विषय है, इस पर कोई बात करने की आवश्यकता है? हमारी दादी नानी, हमारी चाचियाँ तो उस टाइम पे खूब काम करती थीं, तो आज की महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? मीन्स कि उस पर आपको तमाम तरह की चीज़ें सुना देंगे, लेकिन जागरूकता के लिए अगर हम बात करेंगे तो उस पर चुप्पी साध लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सारे पुरुष एक जैसे होते हैं या लोगों को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी भी हमारे समाज में ज़रूरत है जागरूकता की, और ये जागरूकता फैलाने में हम आगे आएंगे। जिस तरह से आकाशवाणी ने ये स्टेप लिया है, उसी तरह से आपके घर की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो पुरुष हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपको सभी लोग अगर हम मिलकर इसको जन आंदोलन बना देंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय पर, जो इस समय पर जैसे 1,25,000 के आसपास महिलाएं ग्रसित हो रही हैं और उनमें से 70-80 हज़ार महिलाओं की जान चली जा रही है, और ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये संख्या सिर्फ संख्या नहीं है, ये वो सदस्य हैं, वो इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं उस परिवार के, जिन्होंने पूरे परिवार की डोर संभाल रखी है। तो बस अंत में यही बोलना चाहूंगी कि इसके लिए जागरूकता की जरूरत है, शर्म झिझक को साइड में रखना है, खुद भी जागरूक रहना है, दूसरों को भी रखना है, और सर्वाइकल कैंसर कोई शर्म या झिझक का विषय नहीं है। वैक्सीनेशन यानी कि HPV वैक्सीनेशन आपको करवाना है, और ये बिल्कुल मुफ्त है, सरकार ने इसको फ्री कर दिया है, आप वहाँ से लगवा सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी किसी भी पसंदीदा जगह से, जो भी डॉक्टर आपके विश्वसनीय हैं, आप वहाँ पर लगवा सकते हैं। 9 से 26 साल तक की उम्र की महिलाओं के लगता है, और आप चाहें तो उसके बाद भी महिलाओं को लगवा सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। आकाशवाणी ने मुझे ये विचार यहाँ पर रखने के लिए, साझा करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी हमने सुनी वार्ता सर्वाइकल कैंसर, डर नहीं जागरूकता जरूरी, और वार्ताकार थी राखी गंगवार। हमें उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी।
2: वे जो हमें जीने का तरीका सिखा

0: आते हैं, वे जो हमें सही और गलत की पहचान कराते हैं, वे जो हमारी छोटी छोटी सफलताओं पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, वे ही हमारे शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने। तो श्रोताओं, यही विषय है हमारे आज के क्षेत्र संकलित कार्यक्रम का टीचर। यहाँ हमने बात की है रेखा रानी से और जाना कि वो किस प्रकार अपने शिक्षण कार्य को करती हैं। तो चलिए सुनवाते हैं श्रोताओं आप सभी को ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
2: जी मैम, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
3: जी मेरा नाम रेखा रानी है और मैं एक अध्यापिका हूँ।
2: जी तो मैम आप कहाँ पढ़ाती हैं?
3: मैं ननिहाल जाती।
2: अच्छा, तो जैसे कि आप एक टीचर हैं तो आपको घर के साथ साथ स्कूल में आना पड़ता है, तो आप ये घर और बाहर की जिम्मेदारी किस तरह से निभाती हैं?
3: जी मैम, बस ऐसे ही हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं और फिर बच्चों के लिए टिफिन नाश्ता बना के घर के सारे काम करके जल्दी जल्दी 8 बजे का हमारा विद्यालय है और हम स्कूल पहुँच जाते हैं।
2: जी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता होगा इन दोनों को मैनेज करना?
3: जी जी जी, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है मैडम।
2: जी लेकिन एक तरह से अगर हम घर और बाहर दोनों संभालते हैं तो हम दोनों को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं।

0: को करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन आज के जमाने में आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कामकाजी महिला सिर्फ कामकाज से ही नहीं, अपना घर और बाहर दोनों संभाले तभी वो अच्छे से अपनी गाड़ी लेकर चल सकती है।
2: जी आपने बिल्कुल सही कहा, कामकाजी महिला दोनों जगह ही अपनी अच्छी जिम्मेदारियां निभाती है, और घर घरेलू महिला का तो ये है कि भाई अपना थोड़ा लेट कर लेंगे या थोड़ा बाद में कर लेंगे। हम लोगों को तो समय से सारा काम निपटाना होता है, सारी जिम्मेदारियां समय से निपटानी होती है, वरना तो हमारे काम में दिक्कत आ जाएगी।
0: जी तो मैम, आप जैसे बताया कि आप घर और बाहर दोनों लेकर चलती हैं, तो आपके परिवार में और कौन कौन सदस्य रहते हैं?
2: जी मेरे जो सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे हैं।
0: जी तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं, छोटे हैं या स्कूल जाते हैं?
2: ना स्कूल जाते हैं मैम।
0: जी तो सुबह उठकर उनको नाश्ता बनाना, उनका स्कूल बैग तैयार करना।
2: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और बड़ों के लिए भी थोड़ी सी जिम्मेदारी हो जाती है, उन्हें भी चाय वाय टाइम से देना
0: और फिर अपने स्कूल की तैयारी करना।
2: जी जी जी, हस्बैंड के लिए भी बना के रख के जाना।
0: जी तो आप बहुत टाइम टेबल से अपना काम मैनेज करती हैं मैम।
2: जी पहले मेरे बच्चे निकलते हैं, उनकी बस आ जाती है, फिर मैं निकलती हूँ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड 10 बजे जाते हैं। बस सब ऐसे ही लगातार घर में फटाफट फटाफट अपना काम करके निकल जाते हैं।
0: अक्सर मैम हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि शादी के बाद वो जॉब नहीं करना चाहती, क्योंकि वो दोनों जिम्मेदारियां निभा नहीं सकती हैं, तो वो इसलिए सिर्फ घर को ही संभालती हैं। तो आप ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी?
2: देखिए ये तो अपनी मन की इच्छा है, घर में भी ऐसा नहीं है कि घर में काम कम है, घर में भी काफी काम है, इसलिए मैं उनके बारे में ये नहीं कह सकती कि वो फ्री हैं, वो भी काम करती हैं घर में, और वही पूरा टाइम परिवार को देना, ये तो अपनी अपनी इच्छा है, उन्हें घर में रहना पसंद है तो वो घर में ही रहेंगी।
0: जी लेकिन अगर हम अपने ऊपर अपनी एक जिम्मेदारी निभाएं कि हमें घर और बाहर दोनों लेकर चलना है, तो मैं नहीं मान सकती कि कोई भी औरत हिम्मत हार सकती है।
2: जी मैडम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर जाने से एक महिला के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर आ जाती है, वो घर में रह के कभी नहीं आती, चाहे घर में आप कितना भी कुछ भी कर ले वो बात नहीं आ पाती।
0: जी वो समाज में अपनी एक पहचान नहीं बना सकती, क्योंकि वो सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती है।
2: जी बिल्कुल।
0: जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। उम्मीद करते हैं कि जो औरतें घर से बाहर निकलने से डरती हैं और अपने बच्चों और परिवार की सिर्फ निभाने में ही लगी रहती हैं, तो शायद वो आपकी इस बात से उनके अंदर भी कोई आत्मनिर्भरता पैदा हो। तो आप हमारे श्रोताओं को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी?
2: बस मैं तो मैम यही कहूंगी कि अपने घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी आराम से निभाते रहिए, और सबसे बड़ी बात है खुश रहिए। किसी भी परिस्थिति में आदमी को खुश रहना चाहिए, खुश रहने से जो है सारे काम बढ़िया हो जाते हैं।
0: जी बहुत अच्छा संदेश दिया आपने हमारे श्रोताओं को कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं यह था 6 संकलित कार्यक्रम, जहां हमारी साथी आयशा अनवार बात कर रही थी रेखा रानी से, जो एक शिक्षिका थी। आयशा, आज मैं अपने सारे टीचर्स से एक बात कहना चाहती हूँ। तू जो मिला तो हो गया सब काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल।
4: बहुत खूब प्रेरणा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह आपके बोल नहीं बल्कि किसी गाने की लाइन्स हैं।
3: सही कहा आयशा।
4: लेकिन ये गीत भी तो बहुत प्यारा लगता है ना, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
3: जी बिल्कुल।
4: एक प्यार का नगमा है

श्रोताओं, गीत संगीत के बाद बढ़ते हैं अपने एक और छेद संकलित कार्यक्रम की तरफ, जहां हम बात करेंगे शालिनी भारद्वाज से, जो एक शिक्षिका हैं जो लगातार कई वर्षों से बच्चों को केवल शिक्षित ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें काबिल

0: इंसान भी बना रही हैं। हम आपको सिर्फ इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि टीचर एक वह व्यक्ति होता है जो हमें लगातार हर परिस्थिति में आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना सिखाता है। तो चलिए सुनते हैं एक और छेद संकलित कार्यक्रम।
1: आज हम बात करेंगे शालिनी भारद्वाज से, जिनका योगदान सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं बल्कि हर बच्चे को बेहतर इंसान बनाने में भी अहम है, जो हमेशा अपना समय और ज्ञान बिना किसी स्वार्थ के बांटती हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं शालिनी भारद्वाज जी से। शालिनी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार प्रेरणा जी, और स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शालिनी जी, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: जी, मेरा पूरा नाम है शालिनी भारद्वाज, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की शिक्षिका हूँ। करीब पिछले विगत 22 वर्षों से ये सब सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटे छोटे चीजें जिंदगी में हम नई सीखते हैं रोजाना और बच्चों के साथ शेयर करते हैं।
1: आप टीचिंग फील्ड में कैसे आई? क्या आपका शुरू से ही सपना था एक शिक्षिका बनने का?
2: शुरू से तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारे सामने डॉक्टर इंजीनियर इसी तरीके के होते हैं।
1: जी जी।
2: हाँ, जब 1991 में 10th पास किया मैंने, तो आसपास के कुछ जरूरतमंद बच्चे घर आने लगे, उनको धीरे धीरे हेल्प करना शुरू किया। फिर लगा कि हाँ, हम बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और पता नहीं कब धीरे धीरे ये एक आदत और फिर एक शौक बन गया।
1: बच्चों को पढ़ाते समय आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं?
2: बच्चों को पढ़ाते समय अगर हम किताबों की भारी भरकम शब्दावली को इस्तेमाल करेंगे
1: जी,
2: तो मुश्किल होगा उनके लिए उसे समझना, क्योंकि वो तो किताब पढ़ के खुद भी सीख सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो हमेशा मैं ये कोशिश करती हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है कि उनका टेंशन टॉपिक पे रहे और हमारी भाषा सफल और स्पष्ट होनी चाहिए। जितनी जल्दी वो समझेंगे उतनी ही जल्दी उनको याद हो जाएगा।
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हिसाब से एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: अच्छा टीचर बच्चों को दोनों तरह से समझता है, एक टीचर की तरह भी और एक माता या पिता की तरह भी। अगर हम बच्चे को दो तरफ से इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं, तो हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और हमारा टीचिंग स्टाइल बुकिश या बोरिंग नहीं होगा। अगर हम इंटरेस्टिंग कॉमन लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास रोज कुछ नया होगा बच्चों को बताने के लिए, और बच्चे हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेफिनेटली शो करेंगे।
1: शालिनी जी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। आपकी बात से बिल्कुल जाहिर होता है कि बच्चे आपसे बहुत अच्छे से सीखते ही होंगे।
2: नहीं, हमारे एक्सपीरियंसेस उनके साथ जाएंगे, वो उनका एक्सपीरियंस बन जाएंगे, और यही हमारे टीचिंग और लर्निंग को इजी बना देगा, कंफर्टेबल बना देगा।
1: जी, आप बच्चों के डिसिप्लिन और मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करती हैं?
2: देखिए, हर सिक्के में जैसे एक हेड होता है ऐसे एक टेल भी होता है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनके भी अपने सुख दुख होते हैं, उनके भी अपनी रिश्ताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो बहुत साल पहले मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सब ये चाहते हैं कि हम उनकी सुने, अगर हम सबके सुनेंगे तो हमारी कौन सुनेगा। तो अगर आप बच्चों की परेशानियां भी सुन लें, उनकी बिहेवियर उनके चिड़चिड़ेपन को देख करके, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं।
1: जी, आजकल के बच्चों के बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका है।
2: जी,
1: तो आप इस चेंज को कैसे हैंडल करती हैं? इतने लंबे टीचिंग करियर में कोई ना कोई स्टूडेंट तो आपको जरूर ऐसा मिला होगा जिसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहा हो।
2: बहुत सारे बच्चे आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए खुद एक सबक बन जाते हैं, हमारे लिए छोड़ जाते हैं कि हमें क्या सीखना था। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हम सब बच्चों की IQ के पीछे भाग रहे हैं, उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के पीछे, और हमें उनका EQ भी ध्यान रखना है, उनका इमोशनल क्वेश्चन, तो मुझे परेशानियां नहीं आती। हाँ, बच्चे होते हैं रूठ जाते हैं उस समय, कुछ सालों बाद जब दोबारा मिलते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और वो उस दिन उस चीज के लिए जब माफी मांगते हैं तो टीचर्स के दिल में कभी बच्चों के लिए कुछ नहीं रह जाता, वो सब कुछ समय के साथ धुल जाता है।
1: क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आपके टीचिंग करियर का सबसे यादगार पल कौन सा है?
2: मेरे टीचिंग करियर में 22 सालों में बहुत सारे बच्चे आए। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं। एक बच्ची मेरी जिसने IFS क्वालिफाई किया,
1: अच्छा,
2: इंडियन फॉरेन सर्विस, और जब उसको स्कूल में बुलाया गया उसके अवार्ड के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए, तो बच्चे तो कह देते हैं स्टेज पे खड़े होकर के कि वो हमारे क्लास टीचर थे, वो हमारे टीचर थे। मुझे भी लगता है वो एक फॉर्मेलिटी होती है या बच्चों को नाम याद रह जाते हैं। अच्छा तब लगा जब उसके पेरेंट्स ने पूछा प्रिंसिपल से
1: जी,
2: शालिनी मैम कौन सी है, उन्हें हमसे हमें उनसे मिलना है। और मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको मेरा नाम कैसे याद है, तो वो कहते हैं कि आज भी जब इसे मुश्किल होती है तो ये कहती है मेरी मैम होती तो ऐसा करती। उस

0: हमें लगा कि शायद इतने सालों की हमारी जो टीचिंग है वो सफल हो गई।
1: वाकई बहुत ही प्यारा पल रहा होगा आपके लिए वो।
0: जी वो अनफॉरगेटेबल रहा मेरे लिए।
1: शालिनी जी, आजकल टेक्नोलॉजी का रोल एजुकेशन में बहुत बढ़ गया है, आप इस पर क्या सोच रखती हैं?
0: टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है टेक्निकल रेवोल्यूशन के साथ साथ। हम बच्चे थोड़े, हम टीचर्स को भी टेक्नो से भी बनना पड़ रहा है। हमें बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए टॉपिक सीखने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए लेकिन टाइम रखें अपने साथ, जिसे हम कहते हैं फैमिली टाइम, मी टाइम। अगर टेक्नोलॉजी के साथ वो इन गैजेट्स के साथ साथ इसको भी मेंटेन कर सकते हैं तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक एडवांटेज होगी, एक व्यसन या एक एडिक्शन नहीं होगा और हम टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं।
1: बहुत ही प्रेरणादायक विचार है।
0: धन्यवाद।
1: शैली जी, हमारे रेडियो कार्यक्रम के जरिए आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: और बस एक बहुत छोटा सा संदेश मैं देना चाहूंगी, स्वस्थ रहें, संस्कारवान बने। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वही मैं भी चाहूंगी कि सबके साथ हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया।
1: बहुत खूब शालिनी जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। आज
0: धन्यवाद।
1: के इस व्यस्त समय में हमें अपना कीमती समय देने के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, ये था क्षेत्र संकलित कार्यक्रम जिसमें हमारे साथी प्रेरणा ने बात की थी टीचर शालिनी भारद्वाज से। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। क्या हुआ प्रेरणा, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी, अभी आपका फेस अब एकदम से उतरा उतरा सा लग रहा है।
3: आयशा, मुझे आजकल रोज ही सिर में दर्द हो जाता है, सिर दर्द की गोली लेनी पड़ती है, जबकि सब लोग मना करते हैं पेन किलर नहीं खानी चाहिए।
2: प्रेरणा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, तनाव, मोबाइल और कंप्यूटर का ज्यादा से उपयोग, नींद की कमी, गलत खान पान सिर दर्द की बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। तो चलो क्यों ना आज अपने श्रोताओं को सिर दर्द से बचने के कुछ आसान और जरूरी बातें बताई जाए।
3: जी बिल्कुल, श्रोताओं भरपूर नींद लें और रोज एक निश्चित समय पर सोने जागने की आदत बनाएं।
2: दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से सिर दर्द का कारण बनती है।
3: बहुत देर तक मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगातार ना बैठें।
2: तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और हल्का व्यायाम जरूर करें।
3: तेज धूप में निकलें तो सिर ढककर निकलें।
2: ज्यादा चाय, कॉफी और बाहर के तले भुने भोजन से बचना चाहिए।
3: यदि लगातार या तेज सिर दर्द हो रहा हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें और हमेशा डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।
2: प्रेरणा, अब बात कर लेते हैं पत्रों की। हर बात की तरह ये प्यारा सा रंगीन पत्र हमारे पास आया है और भेजने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से, इरफान खां PWD वाले, शायदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना ने। इन सभी को 5 मई की परिवार जगत की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। ये प्रस्तुति मेरी और प्रेरणा आपकी थी। कार्यक्रम को पसंद करने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
3: परिवार जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि अपने विचारों को पत्रों के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो आज ही हमें अपना पत्र लिखकर भेजिए और अपने सुझाव, विचार और प्यार हमारे साथ साझा कीजिए।
2: और हमारा पता है केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर और हमारा पिन है 244901। तो आप सभी हमें पत्र भेजना बिल्कुल भी नहीं भूलें।
3: अब गीत संगीत हो जाए आयशा।
2: हाँ बिल्कुल, तो अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: इसी गीत के साथ परिवार जगत कार्यक्रम से आयशा अनवार को दीजिए इजाजत, आदाब और नमस्कार।
1: और प्रेरणा गुप्ता को भी दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम परिवार जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: pledged that he would prove his doubters wrong. Mr. Starmer said this while giving a speech in London. Back home, benchmark domestic equity indices declined around 1.4% in the afternoon session today. The Sensex plunged 1,048 points to 74,967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heat wave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Himanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Roth. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश. हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है. एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है. परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी. पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे. दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा. दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक.
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম.
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग

0: को कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक

0: आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। तो आइए कार्यक्रम में सुनते हैं यह अगला गीत। फिल्म हीरा पन्ना से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम में यह अगला गीत। फिल्म घरौंदा से रूना लैला और भूपेंद्र की आवाजों में।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म धर्मात्मा से मुकेश और कंचन की आवाज में।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुनहरा दौर। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा सम्पन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: रेली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: ही सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का नमस्कार
0: और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है, खास तौर पर क्योंकि एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात

0: भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं
1: हाँ
0: बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं,
1: बिल्कुल सही
0: कितनी
1: बात है।
0: बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल
1: हालांकि
0: तो।
1: समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने 1.5 महीने के लिए
0: जी
1: हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो 1 हफ्ता 10 दिन का समय निकालकर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी ना किसी
0: बिल्कुल।
1: रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी शिक्षकों के क्या अनुभव हैं? क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं? उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे
0: बिल्कुल।
1: साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं,
1: हाँ
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चिल्ला चहलकदमी चल रही है, या
1: जी
0: अभी कहीं बच्चे गए हुए हैं तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे,
0: सही
1: ऐसे
0: बात
1: शब्द
0: है,
1: होते हैं।
0: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
0: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में,
1: जी
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में।
1: जी
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं,
1: और
0: व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं। घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते हैं ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही
0: जी
1: हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में,
0: जी
1: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है।
0: जी आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
1: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर, ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं, कितने
1: हाँ,
0: सुंदर लगते हैं देखने
1: और
0: में।
1: गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना,
0: जी
1: जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: उस
1: ऐसा
0: वक्त
1: लगता
0: ऐसा
1: है।
0: लगता है इसके ऊपर चले नहीं, है ना,
1: और वो
0: लेट
1: गर्मी
0: जाए
1: से,
0: बस।
1: हाँ गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना, यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं। और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता
1: जी
0: है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है,
0: जी
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की
0: बिल्कुल,
1: जरूरत होती
0: जब
1: है।
0: हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा,
1: जी
0: पूरा घर फिर आके पूछता है, ये ठीक से तो है ना,
1: हाँ
0: बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे
1: हाँ
0: से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों, या आपके बागीचे में लगे हों, या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे
1: जी
0: आप लगा सकते हों, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है, जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती, तो कई बार यहां वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है।
1: और
0: और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है,
1: हाँ
0: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना, कई बार
1: लेकिन
0: ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या

0: वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बार भी और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था, और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकल

0: निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंचाई
1: जी
0: है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
3: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए,

0: ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली
1: जी। और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं
0: हाँ।
1: और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
0: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
0: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
0: और वो ऐसा मानती हैं कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
0: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
1: जी, और वक्त हो चला एक गीत का
0: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं, जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सोनार की एक लोहार की, यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक, लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव, यानी कि जो 100 कौरव थे, उनको धाराशायी कर दिया, और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन? बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन। तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
1: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी,
1: वो
0: और
1: जो
0: महिलाओं को
1: पुरानी
0: मदद भी
1: छुरी जो
0: मिलेगी।
1: होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत

0: छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
0: जी
1: खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा
0: जी
1: सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा हो
0: इसी
1: रहा है।
0: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ।

0: तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप अहमदनगर जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बार।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका

0: थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी,
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने भी काई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कू पै आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं
1: जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे

0: बोले
1: उसी रोल के लिए
0: नहीं,
1: हाँ
0: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
1: वाह, हाँ।
0: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है। आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

0: और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना। आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव आमरा प्रकर जी। तो वो 2 मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप। ये स्क्रिप्ट उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ
0: और? नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने। और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंडसअप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने कहा ये क्या रोल है,

0: बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धशक्ति के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी हैं, और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है, मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी जी।
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया, एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा

0: सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वीवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया

0: है, लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको। तो आप ऐसा करो, इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले, अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे। और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक मयाई हो गई जैसे,
0: जी जी
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ,
0: जी
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत।
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम आज शाम।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने रेडियो साथी रोहित कुमार को कृति को, और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज शाम में। साथियों, आज का सफर कुछ मौसम से रिलेटेड है। मौसम एक एहसास जैसे होते हैं। साथियों, मौसम सिर्फ प्रकृति का बदलाव नहीं होते, ये हमारे मन, हमारी यादों और भावनाओं का आईना होते हैं। कभी बारिश बनकर दिल को भिगो देते हैं, तो कभी ठंडी हवाएं पुराने लम्हों को छू जाती हैं। हर मौसम कुछ कहना चाहता है, बस सुनने वाला दिल होना चाहिए। और आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी शुरुआत को इन पंक्तियों के साथ। कभी धूप सी खिली या कभी धूप सी हंसी बिखेरता, कभी बादल बन छा जाता है, ये मौसम भी इंसानों की तरह होता है, हर पल रंग बदल जाता है। कभी बारिश बनकर यादों को भिगोता, कभी सर्द हवाओं में सुकून दे जाता है, कभी पतझड़ बन बिछड़ने का दर्द देता, तो कभी बसंत बन उमंग जगा देता है।

श्रोताओं, सुबह की हल्की धूप, हाथों में चाय और अपनों का साथ, कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते। ठंडी हवाएं अक्सर हमें अपने अपनों का एहसास कराती है, हमारे दोस्त, हमारे अपने जो शायद आज हमसे दूर हैं, कभी हमारे साथ थे। किसी ने खूब कहा है, सर्द मौसम में धूप का नज़ारा भी कमाल लगता है, हर इंसान थोड़ा और खास लगता है।

श्रोताओं, जीवन मौसम की तरह है, कभी खुशियों की धूप है तो कभी संघर्षों की बारिश, लेकिन हर मौसम गुजर जाता है। जिंदगी में कोई मौसम हमेशा नहीं रहता, इसीलिए बुरे वक्त में धैर्य और अच्छे वक्त में विनम्रता जरूरी है। मौसम बदलते रहते हैं, राहें निकलती रहती हैं, जो मुस्कुराकर चल दे मंजिल उसी को मिलती है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी बहुत से बदलाव आते हैं। हमें हर बदलाव को स्वीकार करना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और प्रकृति से हम लोग बहुत सीखते हैं, मौसम प्रकृति का ही एक हिस्सा है। और कभी कभी बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, तो इसी सोच के साथ कि आप सभी बदलते परिवेश में, जिस प्रकार से मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, आप अपने आप को संभाल के रखेंगे और हमें यूं ही सुनते रहेंगे। आशा करता हूं एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगले आज शाम कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती को कार्यक्रम संपन्न करने की इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपकी रेडियो साथी मेघा सक्सेना
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त खुशी।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आज के सवाल का। और आज का हमारा सवाल है, उत्तर भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है?
1: इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिंक भेजने होंगे अपने जवाब। सही जवाब देने वाले सभी साथियों के नाम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में।
0: खुशी, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा विशेष दिन है?
1: हाँ मेघा, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है।
0: ओह अच्छा, यह दिवस क्यों मनाया जाता है?
1: ये दिन नर्स के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि वे मरीजों की सेवा और देखभाल में बहुत बड़ा योगदान देती हैं।
0: सच में नर्स बहुत मेहनत करती हैं, वे हर समय मरीजों की मदद के लिए तैयार रहती हैं।
1: बिल्कुल, चाहे दिन हो या रात, नर्सें अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी भी निभाती हैं।
0: मैंने देखा है कि जब कोई मरीज परेशान होता है तो उस नर्स उसे बहुत प्यार से समझाती हैं और हिम्मत देती हैं।
1: हाँ, यही वजह है कि मरीज जल्दी अच्छा महसूस करने लगता है।
0: वैसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है?
1: क्योंकि मेघा, इस दिन महान नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उन्होंने नर्सिंग सेवा को नई पहचान दी थी।
0: अच्छा, तभी उन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है।
1: बिल्कुल सही, उनका जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था।
0: कोरोना महामारी के समय भी नर्सों ने बहुत मेहनत की थी।
1: हाँ, उस समय उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की।
0: सच में नर्सों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: इसलिए हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।
0: सही कहा, नर्सें समाज के लिए प्रेरणा होती हैं।
1: चलो, आज हम सभी नर्सों को धन्यवाद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: एक ऐसा विषय जो हमारी धरती की हरियाली, हमारी थाली और हमारी जिंदगी तीनों से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की।
0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ पौधे स्वस्थ ना रहें तो हमारी दुनिया कैसी होगी? खेत सूने हो जाएंगे, फलों की मिठास गायब हो जाएगी और हवा में वो ताजगी भी नहीं रहेगी जो हमें जीवन देती है। यही वजह है कि हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पौधों की सुरक्षा और उनके महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।
3: ये दिवस हमें याद दिलाता है कि पौधे सिर्फ हरियाली नहीं है बल्कि हमारी पूरी जीवन श्रृंखला का आधार है। हमारी लगभग 80% खाद्य सामग्री पौधों से ही आती है, चाहे गेहूं की रोटी हो, आम का रस हो या चाय की प्याली, सब कुछ पौधों की देन है।
0: लेकिन दोस्तों, आज पौधों के सामने कई खतरे हैं, कीट, बीमारियां, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। कई बार छोटे छोटे कीड़े पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, इससे किसानों को नुकसान होता है और खाद्य संकट भी बढ़ सकता है। इसलिए पादप स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ पेड़ों की सुरक्षा नहीं बल्कि इंसानों और पर्यावरण की भी सुरक्षा है।
3: सोचिए, अगर खेत मुस्कुराएंगे तभी तो हमारी थाली सजेगी। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हम भी पौधों की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, पौधों में अनावश्यक रसायनों का कम उपयोग करना, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के प्रति जागरूक रहना।
0: आज वैज्ञानिक भी नई तकनीकों के जरिए पौधों को बीमारियों से बचाने के उपाय खोज रहे हैं, वहीं किसान भाई आधुनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से खेती को सुरक्षित बनाने में जुटे हैं।
3: हर पौधा एक उम्मीद है, हर पेड़ एक जीवन है, धरती की मुस्कान बचानी है तो हरियाली को अपनाना है। दोस्तों, जब हम एक पौधा लगाते हैं तो सिर्फ मिट्टी में बीज नहीं बोते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करते हैं। इसलिए आइए इस अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर हम संकल्प लें कि प्रकृति की इस अनमोल धरोहर की रक्षा करेंगे,
4: क्योंकि स्वस्थ पौधे, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, कुछ खास है आज में बस इतना ही, जिसमें आपने आज सुना अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। आइए दोस्तों, आपको भी सुनवाते हैं एक प्यारी सी गजल।

0: दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट भारत के गलियारे के सब सेगमेंट घुमक्कड़ी की ओर।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान की यात्रा पर जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा और शांति से भर उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की।
2: चित्रकूट यानी वह भूमि जहाँ प्रकृति, अध्यात्म और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। विंध्य पर्वत माला के बीच बसा यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का लंबा समय यहीं बिताया था। यही कारण है कि चित्रकूट को राम की तपोभूमि भी कहा जाता है।
1: दोस्तों, चित्रकूट का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है मंदाकिनी नदी की। शांत बहती इस नदी के किनारे बने घाट श्रद्धालुओं पर्यटकों दोनों को आकर्षित करते हैं। खास तौर पर राम घाट की शाम की आरती मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव

0: अनुभव कराती है। दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है।
1: साथियों, चित्रकूट केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी खजाना है। यहाँ के हरे भरे पेड़, झरने और वातावरण लोगों को शहरों की भागदौड़ से दूर सुकून का एहसास कराते हैं। यहाँ स्थित गुप्त गोदावरी भी बेहद प्रसिद्ध है। यह एक गुफा है जिसके अंदर से पानी बहता है। मान्यता है कि भगवान राम यहाँ दरबार लगाया करते थे। गुफा के अंदर एक रहस्यमय वातावरण लोगों को रोमांचित कर देता है।
0: इसके अलावा हनुमान धारा एक ऐसा स्थान है जहाँ पहाड़ी के ऊपर से बहता जल और मंदिर का दृश्य मन मोह लेता है। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद भगवान हनुमान जी की थकान मिटाने के लिए यहाँ जलधारा प्रकट हुई थी।
1: दोस्तों, चित्रकूट की खास बात यह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। कोई यहाँ आध्यात्मिक शांति खोजने आता है तो कोई प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने। यहाँ की संस्कृति, लोकगीत और लोगों की सरलता हर किसी का दिल जीत लेती है।
0: अगर आप इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति तीनों का संगम एक साथ देखना चाहते हैं तो चित्रकूट आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति है, हवा में सुकून है और हर घाट पर एक कहानी बसती है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप मध्य प्रदेश की यात्रा की योजना बनाएं तो चित्रकूट को अपनी सूची में जरूर शामिल कीजिए।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भारत के गलियारे से के सब सेगमेंट घुमक्कड़ी को, जिसमें हमने आपको बताया चित्रकूट के बारे में। आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारी सी गजल।

0: आइए दोस्तों चलते हैं हमारे सेगमेंट भारत के गलियारे से के सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं में।
1: भारत की धरती पर ऐसे कई किले हैं जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बने बल्कि इतिहास, वीरता और रहस्य की कहानियों से भी गढ़े हैं। उन्हीं में से एक है विजयगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा एक विशाल किला, चारों तरफ हरियाली, पुराने दरवाजे, गूंजती हुई हवाएं और दीवारों में कैद सदियों पुरानी कहानियां, यही एहसास देता है विजयगढ़ किला।
0: दोस्तों विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये किला विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ियों पर बना हुआ है और अपने अद्भुत स्थापत्य, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण बहुत प्राचीन समय में हुआ था और समय समय पर कई राजाओं ने इसे अपने अनुसार विकसित किया।
1: इस किले का नाम विजयगढ़ ही अपने आप में जीत और शौर्य का प्रतीक है। माना जाता है कि यह किला कई युद्धों का गवाह रहा है। इसकी मजबूत दीवारें, विशाल द्वार उस समय की सुरक्षा व्यवस्था की शानदार मिसाल पेश करता है। जब दुश्मन सेना इस किले को देखती होगी तो उसकी ऊंचाइयां और मजबूती देखकर ही डर जाती होगी।
0: दोस्तों विजयगढ़ किले की सबसे खास बात है इसकी रहस्यमयी सुरंगें और प्राचीन संरचनाएं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में कई गुप्त रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय राजा और सैनिक करते थे। अब भले ही उन रास्तों का रहस्य पूरी तरह सामने ना आया हो, लेकिन आज भी ये कहानियाँ लोगों की कल्पनाओं को रोमांच से भर देती है।
1: और अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो विजयगढ़ किला आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ के दीवारों पर बने पुराने निशान, मंदिरों के अवशेष और प्राचीन शिलालेख हमें उस दौर की झलक दिखाते हैं जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था।
0: किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है जहाँ आज भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज और आसपास का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो।
1: दोस्तों विजयगढ़ किला सिर्फ इतिहास का प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ से दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों का दृश्य इतना सुंदर दिखाई देता है कि मन बस उसे निहारते ही रह जाए। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय यह जगह और भी जादुई लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान खुद इस किले की खूबसूरती को सलाम कर रहा हो।
0: अब जरा सोचिए, सदियों पहले जब यहाँ राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े होकर रणनीति बनाते होंगे, तब ये किला कितना जीवंत रहता होगा। घोड़ों की टापे, सैनिकों की आवाजें, युद्ध की तैयारियां और फिर जीत का जश्न। विजयगढ़ का हर कोना मानो उन पलों की कहानी।
1: इतिहासकारों के अनुसार ये क्षेत्र कई राजवंशों के प्रभाव में रहा है। समय बदलता गया, राजाओं की सत्ता बदलती गई, लेकिन विजयगढ़ किला आज भी मजबूती से खड़ा है। और यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह अपनी निशानियां छोड़ जाता है।
0: दोस्तों आज के समय में विजयगढ़ किला पर्यटन का भी एक आकर्षण बन चुका है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ इसकी ऐतिहासिक भव्यता को महसूस करते हैं बल्कि फोटोग्राफी और ट्रेनिंग का आनंद भी लेते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो इस किले की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो

0: सकती है।
1: और दोस्तों सच कहें तो ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हमें अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ती है। आज की तेज भागती जिंदगी में हम जब मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खो जाते हैं, तब ऐसे किले हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं।
0: दोस्तों विजयगढ़ किले से जुड़ी कई लोक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ खजाना छिपा हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं इससे रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ते हैं। हालांकि इन बातों को कई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन यही रहस्य इस किले को और भी दिलचस्प बना देता है।
1: दोस्तों अगर आप कभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की यात्रा करें तो विजयगढ़ किला जरूर जाइएगा। वहाँ की हवा में इतिहास की खुशबू है, वहाँ की मिट्टी में वीरता की गाथा है और वहाँ की खामोशी में सदियों पुरानी आवाजें छुपी हैं।
0: तो दोस्तों आज की हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि विजयगढ़ किले की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वे हमारे आसपास की इमारतों, किलों और धरोहर में भी सांस लेता है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की।
1: दोस्तों ये था हमारा सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं। अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल।

दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महान फिल्मकार को जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि भारतीय संस्कृति, संगीत और भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर दिया।

0: महान निर्देशक, लेखक और निर्माता विजय भट्ट की जयंती।
1: विजय भट्ट जी का नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने ऐसे दौर में फिल्में बनाई जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम हुआ करता था।
0: दोस्तों, विजय भट्ट जी का जन्म 12 मई 1907 को हुआ था। उन्होंने अपने भाई शंकर भट्ट के साथ मिलकर प्रकाश पिक्चर्स की स्थापना की और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी।
1: उनकी फिल्मों की खास बात थी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, संगीत और भावनाओं का खूबसूरत मेल। अगर हम उनकी चलचित्र फिल्मों की बात करें तो राम राज्य, भारत भरत मिलाप, बेजू बावरा और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिल में जिंदा है।
0: खासकर बेजू बावरा, क्या कमाल की फिल्म थी दोस्तों। इस फिल्म ने संगीत को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया वो आज भी मिसाल मानी जाती है। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, नौशाद साहब का संगीत और विजय भट्ट जी का निर्देशन, मानो कला का अद्भुत संगम।
1: और आपको जानकर हैरानी होगी कि विजय भट्ट जी की फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता था बल्कि एक संदेश भी होता था। उनकी कहानियाँ इंसानियत, संस्कार और रिश्तों की खूबसूरती को बहुत सहज तरीके से दर्शाती थी।
0: दोस्तों, आज के दौर में जब तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है तब भी विजय भट्ट जी की फिल्मों की सादगी और भावनात्मक गहराइयाँ लोगों को छू जाती हैं। यही तो है असली कला, जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती।
1: विजय भट्ट जी ने भारतीय पौराणिक और संगीत प्रधान फिल्मों को एक नई पहचान दी। उनकी सोच और विजन ने आने वाली पीढ़ियों के फिल्मकारों को भी प्रेरित किया।
0: आज उनकी जयंती पर हम उन्हें दिल से नमन करते हैं और धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने भारतीय सिनेमा को इतनी खूबसूरत विरासत दी। दोस्तों, चलिए आपको सुनवाते हैं एक प्यारी सी गजल।

0: साथियों, अब समय है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का और पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। साथियों, हमारा आज का सवाल था, उत्तर भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, जिसका सही जवाब है कानपुर। चलिए अब जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिए हैं हमें सही जवाब।
1: दिग्दर्शन गौर, राष्ट्रपाल गजबीये, अजीत भावसर, पुंजाजी नवकर, जगदीश धाकड़, तुलसी मस्कीन, जॉन डे कैस्ट्रो, लालगिरी गोस्वामी, नाजमुल हुडा, धर्मेंद्र छिपा, भाई रफत साहब, दुर्गरम साहू, मोहम्मद अफजल ताज, मसरूर हसन, विनोद मुन्नत, अजीत कसाना, नंद कुमार ठाकुर, सुदर्शन शाह, संजय धिंगिया, मिसबा शमशी, मोहम्मद फरमान, राम कुमार रेवर, नवी हसन अब्बासी, बलवंत कुमार वर्मा, देवशंकर तामूरिया, गजानन येले, मुकेश कश्यप, फागुराम यादव, राघव भगेल, धर्मवीर कश्यप, लाल मोहम्मद अंसारी, हिरामणि वर्मा, रवि कुमार राहुल, ताज अंसारी, मोहम्मद जाहिद अली, बी आई धाकड़, दिनेश वर्मा, सुरेश जायसवाल, शेख अल्ला बख्श, अमीर हुसैन, हाजी गफ्फार खान, सुनील पाठक, रवि रस्तोगी, संजय कुमार साहू, भाई रफत साहब, नारायण प्रधान, मुजफ्फर अली खान, विमल सक्सेना भारती, प्रमोद भगाड़े, राजवीर सिंह, हनमत शिंदे, आमिर हुसैन, अरविंद कुमार, सुरेश गगनेजा, सयेंद्र चंचौलिया, शकील अहमद इदरिशी, प्रवीण चौहान, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, नितेश कुमार देवांगन, धीरज भाई राबड़ी, चौधरी राजवीर सिंह, गुरमीत सिंह मीता, मोहम्मद यसीन अंजन, शानूर नूर अंसारी, मोहम्मद सईद अब्बासी, विजय सुलारकर, शाहजी भोटके।
0: आप सभी को सही जवाब देने के लिए शुभकामनाएं। चलिए प्रोग्राम को अंत करने से पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल।

0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस पते पर, हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर।
1: पिन संख्या है 244901। एक बार पिन संख्या फिर से सुन लीजिए, 244901। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
0: आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9410087876। चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त खुशी
0: और मेघा सक्सेना को इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम में आपके साथ थे आपके रेडियो साथी खुशी और मेघा सक्सेना। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं।

0: आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
4: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
3: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
4: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
5: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
4: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
6: से नो टू प्लास्टिक।
4: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना। सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
1: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को आपके अपने भैया दीपक वर्मा
1: और आपके भैया हरदीप की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम। और सुनाओ दीपक भैया, का हाल चाल है?
0: भैया हमारे हालचाल तो सब ठीक ठाक हैं, और तुम सुनाओ।
1: भैया बढ़िया हैं, और हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उम्मीद है हमें भी बढ़िया होंगे।
0: हाँ
1: और भैया आज तो आपको पता ही है कि हम आतवे जरा थोड़े भींग गए।
0: हाँ भैया, अचानक से बरसात और आंधी तूफान आए वो।
1: हाँ सही बात है।
0: हाँ
1: और ऐसे में जो है भैया, देखो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
0: हाँ
1: ना, बहुत सारी बातों को ध्यान रखनी है,
0: हाँ
1: और उन बातों पर हम जो है आगे बात करेंगे। पर आज को हमारो जो विषय है सिंचाई के आधुनिक तरीके, उनके बारे
0: हाँ
1: में बात करनी है
0: हाँ
1: कि जो तरीका है हर चीज़ के, चाहे खेती बाड़ी के हुए या जीवन जीने की पद्धति हुए या सिंचाई के हुए, हर चीज़ के बदलते जा रहे हैं,
0: हाँ
1: हर कोई नौ तरीका अपना रहा हो भैया।
0: नए तरीका से भैया आजकल जो है उत्पादन में वृद्धि हुई है। हाँ तो जैसे फसल से देखो बेहतर उत्पादन लेने के लिए जो है सिंचाई को जो है आधुनिक सिंचाई से अगर अपनाएंगे ना, तो बामा हमारे उत्पादन में तो वृद्धि हो पाएगी और बाद से जो हमारी आय बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने दीपक भैया। देखो हम सब खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी करते हैं तो भैया हमें खाद पानी सिंचाई तो जो ज़रूरी है वो तो हमें करना ही है। तो बेहतर फसल उगाने के ताई बेहतर तरीका अपनाना ज़रूरी है,
0: हाँ
1: चाहे वो सिंचाई का तरीका हो या और कोई तरीका हो, है ना दीपक भैया?
0: तो भैया जैसे इसमें जो हम पानी जो होता है एक पाइप में और एक स्प्रिंकलर माध्यम से जो सीधे सीधे पौधों पर और जड़ों पर जो बाको तक पहुँचा के जो हम सिंचाई कर सकते हैं।
1: ड्रिप वाली जो विधि आप बता रहे हो बहुत ही
0: हाँ
1: बढ़िया विधि है
0: हाँ
1: ना? वाकई माध्यम से अगर हम सिंचाई करेंगे तो पानी जो है कम लगता है।
0: हाँ और उसके साथ में भैया खादों दे सकते हैं हम।
1: अच्छा
0: हाँ उसकी जड़ पर पहुंचती है और जो हमारी जो व्यर्थ की जमीन जो होती बाप में जो है ना जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कही हमारे किसान भाई बहन जो खाद वगैरह लगा देंगे अपनी फसलों में, सब्जी वाली फसलों की हम बात करें, तो अगर हम पानी की जो है पानी के साथ साथ जो है खाद की भी जो है दे सकते हैं, और खाद जो है कम मात्रा में प्रयोग हम कर सकते हैं जिससे हमारी लागत भी कम आ भाई।
0: एक बिल्कुल हरदेव भैया, इसी प्रकार हम स्प्रिंकलर सिंचाई होती है एक,
1: हाँ
0: जिसमें जो है पानी के पाइप जो होते हैं इसमें जो वर्षा की तरह खेती में फैलाया जाता है।
1: अच्छा
0: हाँ जैसे
1: भैया,
0: वर्षा जैसी होती है वैसे लगता है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा भैया, इसके लाभ की बात करें तो भैया जो का हम जो हमारी भूमि इकसार ना होती ज़मीन, और जहाँ मिट्टी को कटाव जो है कम पानी में अधिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिंचाई होती है, बहुत सारे हमारे किसान भाई कर देंगे इसको, हम का गेहूं मूंगफली आदि में जो है आलू की फसल में प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं भैया, और अत्यधिक मात्रा में किसी भी फसल में पानी देने से फायदे तो कम होते हैं, इसलिए जो है इन आधुनिक तरीके से जो है अगर हम पानी को लगावें तो हमारी पानी की बचत हो गई और हमारी पैसा भी बचाए हो और हमारे उत्पादन में जो है बढ़ोतरी हो गई।
1: अच्छा भैया, इसी प्रकार हम अगर कम पानी में जो अधिक उत्पादन देती है आधुनिक सिंचाई,
0: हरदीप भैया देखो ये तो रही हमारी आधुनिक तौर तरीके से सिंचाई करने की बात, और आज दिन पतो का है, आज है 12 मई।
1: अच्छा आज का दिन है
0: हाँ
1: भैया?
0: हाँ आज जो है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को मनाता है।
1: अच्छा
0: हाँ जो हमारे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही बात कही किसान भाइयों और बहनों हमारे दीपक भैया ने। आज के दिन हम जो है अंतर्राष्ट्रीय जो पादप स्वास्थ्य दिवस है वो को हम मना रहे हैं, और जाको मकसद जो है जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो लोग हैं, उनको जागरूक करने हैं पेड़ पौधन के बारे में, उनको
0: हाँ
1: महत्व समझाने हैं कि पेड़ पौधा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। बाकी ज़रूरत का ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जड़ी बूटी देतेंगे, शुद्ध वातावरण रखतेंगे, धरती को हरो भरो बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा भैया, आजकल जो है पेड़ लोग कम लगा रहे हैं लेकिन काट ज़्यादा रहे हैं, ऐसा ना करें। बिल्कुल देखो गर्मी में जो है बहुत बढ़ रही है इस समय, और बारिश भी समय पर ना होती है, तो अगर हमारे पेड़ पौधा ज़्यादा होंगे तो
1: हाँ
0: वर्षा भी भैया समय पर हो गई।
1: वर्षा भी समय पर हो गई, साथ में जो है मिट्टी को कटाव बो ना
0: हाँ
1: हो गए,
0: बाव ना हो
1: है
0: गए।
1: ना? तो पेड़ जो है भैया लगाते रहें, और जाके साथ साथ हमारे जो गांव हैं शहर हैं दोनों जगह जो है

0: पेड़ जो पौधारोपण है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हर व्यक्ति साल में अगर एक पौधा भी लगा पाए और बाकी देखभाल करे तो आगे चल कर देखते ना तो हम एक क्रांति ला सकेंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में जो है जैसे पंचायत होती हैं और स्कूल हैं, ये तालाब के किनारे पे नीम के, पीपल के और आम के पौधा लगा सकते हैं, जिससे जो है बच्चे हुए भी उनकी देखभाल कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो दीपक भैया कि स्कूल है, तालाब है और कहीं भी जो है जहाँ खाली जगह है ना, तो वहाँ हम पेड़ पौधे जो वृक्षारोपण कर सकेंगे। और वृक्षारोपण में नीम और पीपल जैसे जो पेड़ होता है ना भैया, जे औषधीय गुणों से भरपूर होतेंगे
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: और पहले तो नीम देखे जाए तो हर जगह हमें मिल जाता हो, अब
1: हाँ
0: तो भैया जैसे हम सुबह सुबह घूमन जाए तो हमें देखा तो दिखाई देता है गो,
1: बहुत कम हो गया
0: बहुत
1: भैया।
0: कम रह गो वो नीम, जबकि नीम
1: हाँ
0: बहुत ज़रूरी पौधा
1: हाँ
0: है ना।
1: और भैया देखो, पेड़ लगाने से जो जो पक्षी होता है ना घर के, वो
0: हाँ
1: भैया पेड़ पर ही आधारित होता है। वे अपने घोंसला वगैरह जो वो पेड़ पर ही बनाते हैं।
0: हाँ
1: अगर
0: सही बात
1: ज़्यादा
0: कही। हाँ
1: पौधा होंगे हमारे तो वे
0: हाँ
1: भैया सुरक्षित रहेंगे।
0: तो जैसे जो है हमारे पक्षी जीव हैं वे सुरक्षित रहेंगे और
1: हाँ
0: वातावरण हमारा जो है एकदम बढ़िया
1: बढ़िया रहे
0: रहेगा
1: वो।
0: है ना, शुद्ध
1: हाँ
0: रहे, पर्यावरण भी एकदम बढ़िया रहेगा और
1: हाँ
0: प्रकृति को संतुलन वो बना रहा है।
1: हाँ
0: तो वृक्षारोपण साथियों जरूर करना चाहिए हमें,
1: हाँ
0: साल में हमें एक पेड़ अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा देना चाहिए जिसकी हम देखभाल कर सकें, और आगे चल के हमें उम्मीद है वो पौधा आपको कोई ना कोई आगे चल के आपको लाभ जरूर दे।
1: देखो भैया, घर में जैसे कुछ जगह ज़्यादा होती है, हम वहाँ पे जो पौधा को लगा सकते हैं भाई, नीम से सिंचाई कर सकते हैं भैया।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: बात है जो हमारी यादगार बनी रहती है पौधा की।
0: हाँ सही
1: और
0: बात है कि हम छोटे हैं तो हमने जो पौधा लगाओ हो आगे
1: हाँ
0: चल के जब हम बड़े होंगे तो हमारे बच्चों पौधों को देखेंगे
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: एक खुशी मिलती है कि हमारे पापा ने जो पौधा लगाओ हो और जाके देखभाल करना अब हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जो है हमारे किसान भाई बहन वृक्षारोपण जो है करें और
1: हाँ
0: जो है एक यादगार बनावें और अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित बनावें।
1: हाँ और भैया गेहूं की फसल तो हमारे किसान साथी इनकी उठी है गई है,
0: हाँ
1: तो इस समय खाली खेत पर हैं कुछ किसान भैया
0: बिल्कुल
1: ने।
0: खाली खेत पड़े हैं, तो ऐसे में भैया जो खेत खाली हैं उनको अच्छी तरह जोत लें
1: हाँ
0: और जोतन के साथ साथ साथियों
1: इस समय
0: अब
1: भैया ढेंचा की हो बुवाई कर रहे हैं हमारे कुछ
0: बिल्कुल
1: किसान भैया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहन।
0: हम खुद भैया बुवाई करने के चक्कर में हैं, अब
1: हाँ
0: जाके हम
1: कुछ ना
0: देखेंगे
1: वो
0: दुकान
1: भी
0: पे
1: दो
0: जो
1: भैया।
0: हरी खाद के ताई ढेंचा जो है
1: हाँ
0: हम जो है लगाने के जो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जय बात पर हम सुनवा रहे हैं अपने किसान साथियों को भेंट वार्ता हरी खाद क्यों उगा पाए, और जब मैं जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र भट्ट जी, तो साथियों सुने जो भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है पन्नगर विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप जी। तो सबसे पहले सर आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार किसान भाइयों।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे बहुत से जो किसान भाई हैं, चाहे वो धान की नर्सरी हो या फिर धान की खेती से पूर्व हरी खाद के रूप में पेड़ पौधे हैं या फिर कोई अन्य चीजें हैं वो उपयोग में लाते हैं। जो किसान भाई अगर अभी तक नहीं उगा रहे हैं हरी खाद को, तो सबसे पहले तो आप सर हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो हरी खाद के जो फायदे हैं वो क्या हैं और इसका उपयोग किस प्रकार हमारी खेती के लिए लाभप्रद है।
3: देखिए आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है वो किया है कि ढेंचा के रूप में अगर आप देखें हरी खाद के रूप में हमारी जो मिट्टी है यानी भूमि है उसको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करता है ये ढेंचा। ढेंचा की जो जड़ें होती हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करती हैं, जिससे यूरिया की जो आवश्यकता है हमारे जो भी हम फसल लगाएंगे खेत में उसमें कम आवश्यकता होती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये मिट्टी में जो जैविक कार्बन है उसको बढ़ाता है। अब जैविक कार्बन का क्यों महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो CN रेशियो है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और काफी लंबे समय तक रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने के कारण भी हमारी भूमि में जो जैविक कार्बन है उसकी निरंतरता जो है न्यून होता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि ये भूमि को भुरभुरा बनाता है
2: जी
3: और उपजाऊ बनाता है। तो ढेंचा की अगर आप देखें तो हमारी जैसे ये गेहूं की फसल अब कटने वाली है उसके बाद सबसे उचित समय है ढेंचा को बुआई करने का और अच्छा लाभ प्राप्त करने का।
2: इसकी जो बुआई है कैसे कर रहे हैं, जैसे कि जो किसान भाई हरी खाद के रूप में अगर ढेंची की बुआई कर रहे हैं तो जो बुआई का सर्वोत्तम समय है वो कब है और जो इसकी विधि है बुआई की उसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: देखिए बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारा गेहूं कटने वाला है और गेहूं कटाई के बाद मानसून से पहले मई जून में आप ढेंचे की जो है बुआई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि किसी भी तरीके के खरपतवारों को ये खेतों में बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता है और तेजी से बढ़ने के कारण ये खरपतवारों की जो वृद्धि होती है उसको भी बहुत कम करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमारे किसान भाई 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज अगर इसका इस्तेमाल करें तो आप एक बेहतर तरीके से हरी खाद के रूप में ढेंचे का जो है वो फसल तैयार कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि कब इसको हमें जो है जुताई करनी चाहिए, तो हमेशा याद रखिए इसके जो जड़ों की गांठें होती हैं, यानी कि उसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं, उसमें जो है 45 से 50 दिन में वो रूट नोड्यूल्स पूरे परिपक्व हो जाते हैं और किसी भी तरीके के रोटावेटर की मदद से आप इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें, जिससे कि हमें जो भी हमारे अगली फसल है जिसकी हम बुआई करेंगे उसमें हमें कम से कम नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारी जो जैविक जो कार्बन है उसकी भी बढ़ोतरी होगी।
2: जी सर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे किसान भाई एक एकड़ में अगर हरी खाद के रूप में ढेंचे की बुआई कर रहे हैं तो तकरीबन कितने जो है बीज की आवश्यकता पड़ती है सर?
3: देखिए, बहुत अच्छा पहलू है कि अगर आप हरी खाद के रूप में अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप बीज लेते हैं ढेंचे का तो आपको एक यूं समझिए कि बहुत अच्छा जो है बायोमास मिलेगा आपको। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप इसको 50 से 60 दिन में जब आप इसकी 45 से 60 दिन में आप इसको पलटाई करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो, जब आप मिट्टी में इसको मिला रहे हैं तो पर्याप्त नमी का जो है हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें, जिससे कि इससे बेहतर से बेहतर आपको इसमें जैविक जो उत्पाद है हमारी मिट्टी में यानी कि मृदा में उपलब्ध हो पाएगा।
2: तो अक्सर अगर जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे किसान भाई ढेंचा लगाने के लिए अगर बीज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कहाँ से डॉक्टर प्राप्त कर सकते हैं और उसके तकरीबन जो कीमत की अगर हम बात करते हैं वो कीमत क्या होगी?
3: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ढेंचा बीज की कीमत। जो बाजार में जो ढेंचे का बीज है वो 115 रुपए से 135 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है और निरंतरता अगर आप देखें इस बीज की, आपको अगर आप थोड़े से तैयार रहें इसको मार्केट में पहले ही ले लें क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखी जाती है इसकी बीज की भी, तो मेरा जो बाजार में जो ढेंचा की कीमत है उसके अनुसार ये जो है आप इसको इस कीमत पे खरीद सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अन्य उपयोगों की, तो ढेंचा खाली हम ये ना कहें कि हरी खाद के रूप में ही उपयोग किया जा सकता है, ढेंचा के जो तने होते हैं उससे रेशा जो होता है उसका, उससे भी रस्सी बनाने का भी कार्य किया जाता है। हमारे जो माए बहने हैं या किसान परिवार हैं वो उससे रस्सी भी बनाते हैं। इसके अलावा जो एक खास बात ये होती है कि जब आप ढेंचे की बुआई करते हैं तो बहुत सारे जो बंजर भूमि होती है, जो अल्कलाइन सॉइल्स होती हैं, उनको भी ये रिक्लेम करती है। तो ढेंचा एक यूं कहिए कि एक रामबाण है हमारी मिट्टी के लिए कि ये हमारी जमीनों को, भूमि को खाली जैविक पदार्थों से वो नहीं करती है बल्कि जो हमारे पीएच मान है भूमि का उसको भी सुधारती है और लगातार निरंतर सुधारती है और हमारी जो भी हम फसल उससे प्राप्त करते हैं उसमें कम रसायनों का इस्तेमाल करके आपको बेहतर उपज जो है वो प्राप्त होती है।
2: जी तो सर, जैसे कि हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं बड़ा जो हमारी खेती में अंधाधुंध जो है रसायनों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो हरी खाद का कितना महत्व और बढ़ जाता है?
3: देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की हैवी मेटल्स हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि ऐसे रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, चाहे वो हमारे खरपतवार नाशी के रूप में हो, या हमारे बहुत सारे ऐसे भी रसायन हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी भूमि में, तो को उन सब की जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको कहीं ना कहीं ये जो ढेंचे की फसल है ये हमारी उसको निलिफाई करती है, उसको अवरोध करती है और हमारे जो जीवांश पदार्थ हैं, जो हमारी कार्बन पदार्थ हैं, वो हमारी भूमि में निरंतर उसको बढ़ाती है। और ढेंचा, मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि साल में नहीं तो दो साल में एक बार अपनी फसल चक्र में इस ढेंचे को जरूर सम्मिलित करें, जिससे कि आपको अच्छा भोज्य पदार्थ ही नहीं प्राप्त होगा अपितु जो कीटों और बीमारियों की जो समस्याएं

0: जो हमारे किसान भाइयों की, उसमें भी उससे भी निजात जो है इस ढेचा को लगाने से मिलेगा।
1: जी, तो जैसे कि सर आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, तो डॉक्टर साहब अंत में चलते चलते जो किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

0: पर है भैया, है
1: हाँ
0: ना, भूमि को बंजर उनसा बचाने हैं, उसर उनसा बचाने हैं, तो हरी
1: हाँ
0: खाद को ही प्रयोग करने पर है। और उम्मीद है हमारे किसान जो भाई हैं
1: हाँ
0: वो हरी खाद जरूर करेंगे इस बार, क्योंकि खेत
1: बिल्कुल
0: खाली पड़े हुए हैं बहुत
1: जी
0: सारे किसान भाइयों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: किसान साथियों, आप हरी खाद जो है ज़रूर करें।
1: हाँ
0: तो इसी बात पे जो है आपने सुनी भेड़वार्ता। और अब भैया देखो, हमारा तो मन कर रहा है मनोरंजन करने को,
1: हाँ
0: और हमारे किसान भाई बहन जो प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उनको मन कर रहा हो भैया कुछ ना कुछ सुनने को,
1: हाँ
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: है
1: हाँ।
0: तो कहाँ सुनवा रहे हैं हमारे
1: तो
0: किसान
1: भैया
0: भाइयों को।
1: एक
0: हाँ
1: लोकगीत से मनोरंजन करवा रहे हैं, और राजा तुमने और जिसको स्वर दाएं बीना जी ने।

0: अभी हमारे किसान भैया बहन ने सुनो लोकगीत।
1: हाँ बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ हमारे किसान भैया और बहनों को लोकगीत जरूर पसंद आओगे।
0: हाँ
1: और अब दीपक भैया, आप हमारे किसान भाइयों को काची सुनवा रहे हो।
0: देखो भैया, अब कार्यक्रम में क्षेत्र संकलित को समय है। क्षेत्र संकलित में आप गए, आम के बाग की देखभाल कैसे करें, इनसे आपने बातचीत करी जो है सोनलाल, और ब्लॉक है दातागंज, जिला बदायूं के। तो सुनो किसान साथियों, जा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम को।
1: राम राम किसान साथियों, आज हम आए हैं जिला बदायूं के दातागंज ब्लॉक के अगौरी गांव में, और आम के बाग में बैठे हुए हैं। हमारे एक भैया हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपको परिचय?
2: मेरा नाम सोनलाल है,
1: सोहनलाल।
2: गांव का नाम अगौरी
1: तो भैया, जो आम को बाग आपको ही है?
2: जी।
1: अच्छा, हाँ, बात करें हम कि कै बीघा में भैया, जो
2: 10 बीघा।
1: 10 बीघा में है। तो भैया, इस समय आप जो आम आए हुए हैं, तो आम के बाग की देखभाल में भैया सबसे ज़्यादा किस बात को ध्यान रखने पड़ता है?
2: सबसे पहले समय पर सिंचाई और पेड़ों की सफाई जरूरी है। अगर बाग में घास फूस ज्यादा हो जाए तो पेड़ों की बढ़वार पर असर पड़ता है।
1: अच्छा, जो बात आपने सही कही, आपके बाग में देखी जाए तो काफ़ी साफ सफाई है, और जो है घास फूस ज़्यादा दिखाई ना दे रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है। अच्छा भैया, सही बात है, जो हमने देखी तो कई किसान भाई हैं जो हमारे पेड़ों की काट छटाई वगैरह करतेंगे, तो जाको का मतलब है?
2: हाँ भैया, सूखी और बेकार झाड़ियाँ काटना जरूरी होता है। इसमें पेड़ में हवा और धूप अच्छी लगती है और फल भी अच्छे आते हैं।
1: अच्छा भैया, इस बार मौसम का असर आम पर कैसा रहा है?
2: शुरुआत में मौसम ठीक था, लेकिन बीच में तेज गर्मी बढ़ गई और बौर अपने आने से के समय बारिश आंधी आ जाए तो नुकसान।
1: अच्छा, कई बार जो बौर भी झड़ जाता है। अच्छा, सही बात है भैया, हमने देखी कि कभी कभी जो है बारिश के साथ साथ थोड़ी हवा उछल जाती है, और तेज़ हवा चल जाए तो जो बौर है वो झड़
2: वो
1: जाता
2: झड़
1: है, और
2: जाता
1: जिससे
2: है।
1: आगे चल के जो फल है ना आ पाते। अच्छा, एक बार बताओ भैया, सोनल भैया, कि आम के बाग में सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी लगती है?
2: आम में कीड़े और फफूंदी,
1: अच्छा।
2: खासकर जब मौसम में नमी ज्यादा हो, इसलिए समय समय पर दवाई का छिड़काव।
1: अच्छा, दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, तो ट्रैक्टर की मशीन लाते होगे आप? ट्रैक्टर वाली मशीन से स्प्रे करके छिड़काव करते होगे आप?
2: हाँ, ट्रैक्टर की मशीन लाने पड़ती है।
1: अच्छा। अच्छा भैया, जामे का देसी तरीका भी जो है काम में आते का?
2: हाँ, गौमूत्र और नीम के घोल का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, इससे खर्च कम होता है और पेड़ों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता।
1: हाँ, देखिए तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो रासायनिक दवाइयों को प्रयोग करते हैं, और गौमूत्र और नीम के घोल को इस्तेमाल करके जो है वे जब छिड़काव करते हैं तो जो कीट पतंगा हैं वे दूर रहते हैं, और बीमारियों देखिए तो कम लगती
2: कम
1: हैं।
2: लगती हैं।
1: तो बहुत देसी तरीका है वो, जब लागत वो कम आती है, बहुत अच्छा तरीका है देखी जाए तो। अच्छा भैया, आम की कौन कौन सी किस्में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है भैया?
2: दशहरी, लंगड़ा, चौसा और अमरपाली, तूतापरी और सफेद।
1: अच्छा, यानी कि जो जगह जगह जहाँ जहाँ लोग रहते हैं अलग अलग, तो वहाँ वहाँ यानी कि उस किस्म के जो हैं आम के पौधा लगाए जाते
2: हाँ
1: हैं, तो
2: हाँ
1: उसी हिसाब से उनकी बढ़वार होती
2: बढ़वार
1: है
2: होती
1: ना भैया? अच्छा, आम के बाग लगाते समय भैया कितना समय लगता है, और फलाने में कितना समय लगता है?
2: है। आमतौर पर 3 से 5 साल पेड़ फल देना शुरू।
1: अच्छा, एक बार बताओ सोनल भैया, आम के बाग से कमाई अच्छी हो जाती है क्या?
2: अगर मौसम साथ दे तो और बीमारी कम लगे तो आम का बाग बहुत ज्यादा फायदा देता है। एक बार पेड़ तैयार हो जाए तो कई साल तक आमदनी।
1: अच्छा, एक बार यानी कि तैयार हो जाए तो कई साल तक आमदनी मिलती रहती है। अच्छा, सोनल भैया, हमारे जो किसान भाई हैं मेहनत तो बहुत करतेंगे, और जहाँ में मेहनत तो ज़्यादा लगत हुई। अच्छा,
2: रखवाली, सिंचाई, दवाई और मजदूरी सब देखना पड़ता है।
1: जब आम पकने लगते हैं, जैसे इस समय आम जो पक रहे हैं, तो वह पक्षियों से और चोरी को रात के समय रखाने हो, तो
2: पड़ता है।
1: आप इस समय रात को रखा तो का आम को
2: हाँ,
1: आप रखा तो रात में?
2: रहते हैं।
1: अच्छा, रात को रखा तो तई तो आपके जो आमियाँ जो हैं काफ़ी मोटी मोटी हैं, और देखी जाए तो कौआ की आवाज़ आ रही है, बहुत ही बढ़िया मौसम है गो आम के बाग में। अच्छा, एक बार बताओ भैया, कि गांव में हमारे कई किसान भाई हैं खेती बाड़ी छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं।
2: सही बात है, क्योंकि बागवानी में अगर सही योजना हो तो गेहूं धान से ज्यादा

0: कमाई हो सकती है।
1: सही बात है। बहुत सारे किसान भाई बहन हैं जो अब देखिए तो, क्योंकि लागत जो है बढ़ती जा रही है, तो गेहूं धान में लागत बढ़ती है, तो अच्छा है कि सोचते हैं कि लोग बाग लगाए दें, चाहे बाग हो या अमरूद को होए या किसी और फल को बाग होए, बामा आमदनी ज़्यादा हैगी और नगद पैसा मिल जाता है वो, है ना भैया, फल बेचन पे। बहुत अच्छी बात है। सरकारी तरफ से भैया कोई मदद मिलती है क्या?
0: हाँ, जगह पौधे और सिंचाई के लिए सहायता मिल।
1: अच्छा सोहनल भैया, एक बार बताओ कि हमारे किसान भाई जो है, जो आम के बाग कर रहे हैं, तो उनकी देखभाल किस तरह करें ताकि उनकी बढ़वार अच्छी हो गए?
0: साफ सफाई पर ध्यान दें और पानी उन्हें लगाते रहें,
1: हाँ, जंगली जानवर से बचाना चाहिए तो खेत के चारों तरफ जो है
0: तार लगा देना चाहिए।
1: तार, लेकिन तार बवार लगावा जो कटीलो ना हो, है ना भैया, क्योंकि
0: हाँ,
1: कटीले
0: कटीले
1: तारन से जो है हमारे जानवर को नुकसान होते
0: नुकसान
1: हो
0: होता है।
1: और घाव वगैरह हो जाते हैं। सरकारों पाबंदी लगा रही है तो हमारे किसान भाई उनको जागरूक रहते हुए जो है कटीले ऐसे तार का प्रयोग ना करें, ब्लेड वाले, जो हमारे जानवरों को नुकसान दे, इस तरह भी ध्यान रख के अपने आम के जो बाग हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं और अधिक मुनाफा ले सकते हैं। सोनल भैया, आज आपने हमसे बात करी और बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया आपने जो जानकारी जुटाई हमारे किसान साथियों ने सुनी हुई, और वह जानकारी सुनकर वे अपना लाभ उठाएंगे।
3: बिल्कुल दीपक भैया, और अब हमारे किसान भाइयों को आपका चीज़ जो है सुनवा रहे हो।
2: देखो भैया, हमारे कार्यक्रम में बदलाव करेगा वह, बाग के बारे में हम अपने किसान साथियों को जानकारी दे दें। जो भैया महीने को पहलो बुधवार होगा वह
3: हाँ
2: हमारे सफल कृषक से बातचीत।
3: अच्छा,
2: हाँ
3: और दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से बातचीत।
2: हाँ अगर महीने को तीसरो बुधवार है तो मासिक कृषि गोष्ठी हुई।
3: अगर साथियों महीने का चौथा बुधवार है तो सफल कृषि स्टार्टअप पे बात हो गई।
2: अगर बुधवार अगर पांचवा पड़ जाता महीने को
3: हाँ
2: तो वापस सकल सफल कृषक से बातचीत हुई।
3: अच्छा, और साथियों महीने का पहला जो गुरुवार है उसको हम सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: अगर महीने को दूसरा गुरुवार है तो कृषि पत्रिका खेत खलियान पर।
3: और साथियों अगर महीने का तीसरा गुरुवार है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: साथियों अगर महीने का चौथा गुरुवार है तो कृषि पत्रिका खेत खलियान।
3: अगर साथियों महीने का जो पांचवा गुरुवार है तो हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: अगर महीने का पहला शुक्रवार है तो लोक मंजरी कार्यक्रम जिसमें फरमाइशी लोकगीत पर आधारित होगा।
3: साथियों अगर महीने का दूसरा शुक्रवार है तो उसको हम सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, उनसे जुड़ी समस्याएं और उनसे जुड़े समाधान।
2: और अगर महीने का तीसरा शुक्रवार है तो उसमें लोक मंजरी कार्यक्रम में फरमाइशी लोकगीत।
3: साथियों महीने के जो चौथे शुक्रवार को अगर है तो हम आपको सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, उनसे जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान।
2: अगर महीने को जैसे पांचवा अगर शुक्रवार पड़ जाए तो मामा हम अपने किसान साथियों को लोक मंजरी में फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनवाएंगे। और भैया इस पे जो हमारे किसान साथी मोबाइल नंबर नोट कर लें भैया।
3: हाँ
2: हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 0595-23-243-26।
3: और साथियों आप व्हाट्सएप नंबर और एसएमएस जो आप करना चाहते हैं तो वो नंबर हमारा नोट कर लें, 9410087876।
2: जी एक बार नंबर भैया पुनः बता दो, 9410087876।
3: और साथियों हमारो मेल एड्रेस यानी कि ईमेल जो पता है वो आप नोट कर लें, आप लिख लें, पत्र मिला eirrampur@gmail.com।
2: भैया सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आकाशवाणी AIR रामपुर।
3: और साथियों अगर आप हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो हमारा पत्राचार हेतु पता नोट कर लें, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
2: भैया जो कार्यक्रम में हमारे बदलाव करे गए हैं उनमें जो है जो दिन हमने बताए हैं ना उनमें जो है आप फोन कर सकते हैं और अपनों पत्र भी लिख सकते हैं,
3: बिल्कुल बिल्कुल सही
2: और
3: बात
2: कोई
3: है,
2: सुझाव देना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं
3: बिल्कुल
2: भैया।
3: बिल्कुल। अगर हमारे किसान भाई बहन कोई सुझाव हमें देना चाह रहे हैं तो पत्राचार के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप हमको जो है बता सकते हैं।

0: हाँ
1: तो साथियों जो तो त्रयी कार्यक्रम विवरण की, और अब हमारे किसान भाइयों को आप दीपक भैया काची सुनवा रहे हो।
0: देखो भैया, अब समय हो चलो कृषि संकेत को। कृषि संकेत में जो है गर्मी को मौसम है, और गर्मी
1: हाँ
0: के मौसम में जो मधुमक्खी पालता हमारी जो कुछ किसान साथी, तो वो कैसे ध्यान रखें?
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। आजकल देखिए दीपक भैया कि गर्मी पड़ रही है, और हमने सुनी है कि ऐसे मौसम में जो मक्खी पालन है बावकोकरण में बहुत सावधानी रखनी जरूरत पड़ती
0: देखो
1: है।
0: भैया, मधुमक्खी इनकी अगर ठीक से देखभाल ना कर पाएंगे ना, तो उनकी जो कॉलोनी होती है वह कमज़ोर पड़ जाती है और शहद उत्पादन जो है घट जाता है।
1: अच्छा एक बात बताओ दीपक भैया, हमारे किसान भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मधुमक्खी पालक जो हैं उनको क्या करना चाहिए?
0: देखो सबसे पहले तो भैया उनके जो बक्सा होता है उनको ठंडे स्थान पर रखना चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, तेज़ धूप सीधी सीधी दोपहर की ना पड़े उन पर, और उससे बचाव रखें, और तापमान जब घट जाएगा ना भैया, तो मधुमक्खी उनको हमारी कोई परेशानी ना हो भैया।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। तो एक बार बताओ दीपक भैया, तो बक्सा हम रखें तो कौन सी जगह को चुनाव करें,
0: देखो
1: किस जगह
0: भैया,
1: रखें?
0: जैसे हम चुनाव में जो है पेड़ होता है हमारे छावेदार,
1: हाँ
0: बाकी नीचे रख सकते हैं। अगर
1: अच्छा
0: पेड़ ना भी हैं तो जैसे टीन है, घास फूस या कपड़े, इनको जो है कोई छायादार जो है उनमें रख सकते हैं।
1: यानी कि हवादार रहे रास्ता,
0: हाँ
1: अगर अगर भैया हवा ना लगे तो भैया का नुकसान हो सकता है?
0: देखो, तब बक्से के अंदर जो है गर्मी बहुत तेज़ बढ़ जाएगी, और इससे जो है मोम पिघल सकता है,
1: अच्छा
0: और जो मधुमक्खी होती हैं वे बक्सा छोड़कर भैया भाग सकती हैं। आपने एक जगह देखी हुई भैया, गर्मी के समय में मधुमक्खी बहुत तेज़ी से
1: वो
0: उड़ती
1: सहन
0: हैं।
1: जब हम
0: हाँ
1: लोग सहन ना कर पाते तो मधुमक्खी कहाँ सहन कर
0: हाँ
1: पाते भाई।
0: हाँ
1: अच्छा भैया बात करें हम पानी की, तो पानी की व्यवस्था भैया कितनी ज़रूरी है?
0: पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है भैया। ताज़ा पानी दें अपने वाकिले गर्मी में के मौसम में, और पानी जो दें तो बामे भैया लकड़ी का टुकड़ा या पत्थर जो डाल दें, बासे जो होता कि मधुमक्खी हमारे उस पर बैठ कर पानी पी ली, और अगर
1: अच्छा
0: ना डालेंगे टुकड़ा तो भैया मधुमक्खी डूब भी सकती है।
1: हाँ, यानी कि जो बक्सा को तापमान कम रहता का पानी से?
0: हाँ, बहुत
1: अच्छा
0: कम रहता है, और किसी जैसे चौड़े बर्तन में पानी तो अवश्य रखें।
1: अगर भैया पानी कम ही जाए तो जैसा का असर पड़े?
0: देखो मधुमक्खी दूर दूर से पानी ढूंढन जाएंगी, और
1: अच्छा
0: इससे जो है उनको जो एनर्जी दे भैया, ऊर्जा
1: ऊर्जा,
0: है वह खर्च हो गई, और
1: हाँ
0: कई बार भी भैया वापस न लौट पाती हैं।
1: अच्छा, इसलिए जो है व्यवस्था बढ़िया करके पानी की करतंगे हमारे किसान
0: हाँ
1: भाई। अच्छा बात करें भैया, गर्मियों में फूल जो है कम आतंगे,
0: हाँ
1: तो ऐसे में मधुमक्खियाँ भोजन कहाँ से लाती हैं?
0: भैया, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि कुछ जगह भैया फल फूल बिल्कुल ना रहते हैं, और फल फूल की कमी हो जाती है तो मधुमक्खी इनको बहुत दिक्कत होती है अपने भोजन के लिए। इसके लिए जो है भैया हम चीनी को घोल बना कर दे सकते हैं।
1: अच्छे यानी अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था चीनी के
0: देखो
1: घोल के
0: भैया,
1: माध्यम से करी जाती
0: हाँ
1: है?
0: बिल्कुल,
1: ओहो
0: देखो जैसे 1 किलो चीनी
1: हाँ
0: 1 लीटर पानी में घोल कर
1: हाँ
0: बाको रख दें।
1: ठंडा करके शाम को समय रख दें क्या? अच्छा
0: हाँ,
1: बक्सा के अंदर रखें या बाहर रखें?
0: बाहर रख दें, वो तो बाहर रख
1: अच्छा
0: सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा शाम को ही भैया क्यों दे देंगे?
0: क्योंकि देखो भैया, दिन में देने से जो है दूसरी मधुमक्खी या कीड़े वहाँ में आ सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: इससे जो उनमें लड़ाई को खतरा बढ़ सकता
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा यानी दिन में देखे तो भैया फाइटिंग शुरू हो जाएगी,
0: हाँ
1: कीड़ा
0: हाँ
1: मकोड़न में है ना, है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मधुमक्खी को मिल ना पावे, तो शाम
0: हाँ
1: के समय रख देते होंगे। बिल्कुल सही बात
0: इस
1: कही।
0: मौसम में जो हमारे कीट होता है ना,
1: हाँ
0: मोम के जो कीट होते हैं, चींटी होती हैं, कुछ फफूंदी होती हैं, वे बीमारी बढ़ जाती है, इसलिए जो
1: अच्छा
0: बक्सों को नियमित जो है उनकी जाँचो आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा भैया मोम कीट से बचाव कैसे करें?
0: जो वजह से घर के पुराने जो टूटे हुए फ्रेम होते हैं उन्हें हटा दें, और बक्से को जो है साफ़ सुथरा रखें,
1: अच्छा
0: और कमज़ोर जो होती है ना बाकी वो उसको हटा दें।
1: ये कॉलोनी जो कॉलोनी में मोम कीट जो अच्छा जल्दी हमला करता लग रही है।
0: हाँ
1: अच्छा भैया चींटियों से बचने का कोई आसान तरीका है?
0: हाँ बक्सा जो है आजकल स्टैंड चल गए हैं भैया, स्टैंड के नीचे पानी रख दें, इस तरीके से कर सकते हैं, और इससे जो चींटियाँ ऊपर ना चढ़ पावे। तेल भी आ गया, तेल भी रख सकते हैं
1: अच्छा
0: नीचे।
1: अच्छा अच्छा एक बार बताओ दीपक भैया, का ज़्यादा गर्मी में मधुमक्खियाँ क्या बक्सा छोड़ देती हैं?
0: हाँ
1: कई जगह
0: इस
1: हमने देखा हुआ है।
0: हाँ भैया, उनको जो झुंड होता है ना वो
1: हाँ
0: पलायन कर जाता है बिल्कुल। आपने जब देखी हुई भैया, कहूँ मधुमक्खी या लगो वो होता ना, तो
1: हाँ
0: वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता अगले दिन के लिए, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो
1: अच्छा, तो
0: वो
1: जाके
0: बिल्कुल।
1: रोकन ताई भैया हमें क्या करना चाहिए?
0: देखो जाको रोकने के लिए बक्से में पर्याप्त जगह रखें, उसमें जो हवा को संचार बनाए रखें हवा,
1: अच्छा
0: हाँ, और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त फ्रेम जोड़ दें, और उसके में जो है छाया पानी से जो है पूरा इंतज़ाम
1: पूर्व
0: रहना
1: इंतजाम
0: चाहिए।
1: रखें, यानी कि मधुमक्खियों के खान पीन को पूर्व

0: रखा
1: देखो
0: है।
1: हवा उनके लिए जो है आदान प्रदान बहुत जरूरी है, उनको आने जाने में जो है कोई समस्या ना होना
0: अच्छा
1: चाहिए।
0: एक चीज़ भैया देखिए कि हमने कि हमारे किसान भाई बहन जो अपने खेतन के आसपास जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो वे अपने खेतन में कभी कभी दवाई की छिड़काव करते हैं फसलों
1: हाँ
0: में, सब्जी
1: हाँ
0: वाली फसलें हैं
1: हाँ
0: तो,
1: करते
0: है
1: हैं।
0: ना, तो बाको ध्यान हमें किस तरह रखना चाहिए?
1: देखो दिन में जो दवाई छिड़कने से हजारों मधुमक्खी तो मर जाएंगी भैया।
0: अच्छा
1: हाँ तो उसके लिए जो है शाम के समय पे स्प्रे करें।
0: शाम या सुबह जल्दी
1: हाँ हाँ
0: है?
1: हाँ
0: अच्छा स्प्रे करने से फिर का फर्क पड़े भैया?
1: ना जो फसलन में करेंगे तो भैया मधुमक्खी जो हुई उस
0: अच्छा
1: टाइम
0: अच्छा अच्छा
1: शाम के
0: दिन में
1: समय
0: आके
1: में।
0: वहाँ पे बैठे ही ना, सही कह रहे हो।
1: हाँ।
0: अच्छा कई किसान भाई हमारे इस बात को नजरअंदाज भी कर देतेंगे।
1: तो भैया मधुमक्खी खेती की जो मित्र तो होते ही हैं, ये फसलों में जो परागण की पैदावार को बढ़ाती हैं।
0: अच्छा भैया को बताओ किन फसलों में मधुमक्खियों का ज्यादा फायदा होता है?
1: जैसे घर की सरसों की फसल होती है
0: हाँ
1: और लीची है, आम है,
0: हाँ
1: इस समय आम पर हमारे फल फूल आ रहे हैं, और जो फलदार जो जितने खेती होती है ना अपनी, मधुमक्खी जो है उनमें उत्पादन को बढ़ा देती हैं।
0: यानी कि मधुमक्खी पालन और खेती जो हम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं।
1: ऐसा हुआ परागण होता है उनमें कि वे मधुमक्खी जब उस पर फूल पर बैठी वह दूसरे पे जाती हैं तो बस परागण की
0: हाँ
1: शक्ति बढ़ जाती है।
0: यानी कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वे खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी जो है कर सकेंगे, और
1: हाँ
0: बहुत सारे किसान भाई जो बहन हैं वे अपना भी रहे हैं। अच्छा एक
1: हाँ
0: बार बताओ दीपक भैया, गर्मियों में हम जो बक्सों की सफाई कितनी बार हमें करना चाहिए, क्योंकि
1: देखो
0: साफ
1: उसकी
0: सफाई भी जरूरी है।
1: साफ सफाई बिल्कुल, देखो उसके पास जो है आसपास जो है साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर हो गए तो भैया फूल वगैरह जरूर लगा दें थोड़े बहुत।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: फूल की खेती अगर उसके पास में हुई तो हमारी सेहत की मात्रा बहुत अच्छी हुई।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा क्या बक्सों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी जरूरी होता है क्या?
1: हाँ ले जाते हैं, जैसे भैया हमने सोची कि यहाँ पर फूल फल फूल वाली फसल ना है और 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर फूल वाली फसलें हैं, जैसे आम आम के बाग होते हैं, जैसे हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ ना है तो भैया वहाँ ले जाकर हम रख
0: तो
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात बताइए आपने हमारे किसान भाइयों को, और वे है जो है इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे और बड़ी तरीके से मधुमक्खी पालन करेंगे।
1: हाँ
0: और अब हम अपने किसान भाइयों को बता दें कल के मौसम की जानकारी, कल का उच्चतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, साथियों हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 49%, और वर्षा को अनुमान आंशिक रूप से जो है रह सकता है वो।
1: हाँ
0: तो ये तो रही कल के मौसम की जानकारी,
1: और भैया बता दो कल की कार्यक्रम को विवरण कुछ।
0: तो सुनवाएंगे चर्चा फसलों में कीट और रोग प्रबंधन, और साथ में सुनवाएंगे भेंट वार्ता, और सुनवाया जाएगा एक प्यारा सा लोकगीत, और दी जाएगी मौसम की जानकारी। उम्मीद करते हैं साथियों हमारा कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आओ, है ना दीपक
1: हाँ
0: भैया?
1: हाँ तो
0: तो इसी के
1: भैया
0: साथ हम आपसे लेते हैं विदा, सभी किसान भाइयों और बहनों का आपके भैया हरदेव की
1: और दीपक की राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे वार्ता। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वरिष्ठ अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू से बात कर रहे हैं अवधेश कुमार गौतम।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हाजिर हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतनाम सिंह मट्टू जी। सतनाम सिंह मट्टू जी अध्यक्ष भी हैं बार एसोसिएशन रामपुर के। वकील साहब, मैं आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका स्वागत करना चाहूँगा।
2: धन्यवाद
1: सर। सबसे पहले तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या?
2: देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जैसा कि उसके नाम से ही ये विदित होता है कि ये 2005 में ये विधि अस्तित्व में आई और 11 मई 2005 को यह कानून बना संसद द्वारा, जिसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा 15 जून 2005 को अनुमोदित किया गया और पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू किया गया।

0: कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों को सभी विभागों के संबंध में हो रहे विकास कार्यों की संपूर्ण जानकारी हो, और इसके अतिरिक्त जहां भी कहीं भ्रष्टाचार ना हो, कुछ विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, कुछ अधिकारियों द्वारा शिकायतें थीं, उनको सार्वजनिक किया जा सके, कानून की यही एक मंशा थी।
1: वकील साहब, ये जो कानून है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसकी अगर हम इतिहास में जाएं, इसका ओरिजिन अगर जानने की कोशिश करें, तो कहां से हम इसका आधार मान सकते हैं जहां से ये कानून की शुरुआत होती है?
0: देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान में जहाँ हमें अधिकार देता है, गोपनीयता का अधिकार देता है, वहीं हमें अपने कर्तव्य का भी अधिकार मिलता है। और सबसे पहले मैं अगर सूचना अधिकार अधिनियम की बात करूँ तो इसका ओरिजिन 1997 में तमिलनाडु सूचना अधिकार अधिनियम के रूप में शुरू हुआ था,
1: जी
0: और केंद्र सरकार ने जब देखा कि तमिलनाडु में वह बहुत सक्सेस जा रहा है और आम जनमानस को सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ी है, तो केंद्र सरकार ने भी, उस समय की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी, उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो संपूर्ण देश में हो, और वो कानून बनाया गया और जो अंतिम रूप से 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया, और यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ।
1: जी
0: जम्मू कश्मीर राज्य में इसलिए लागू नहीं हुआ था क्योंकि आर्टिकल 370 वहाँ पर लागू था,
1: जी
0: और आर्टिकल 370 लागू रहने के कारण वहाँ के लिए एक अलग से सूचना अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया
1: जी
0: जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू हुआ। लेकिन अब चूंकि 370 आर्टिकल समाप्त हो चुका है और 35A समाप्त हो चुका है, इसलिए अब वही सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है।
1: सर, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के लोग किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या जानकारी हासिल कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें किसी भी विभाग के संबंधित रिकॉर्ड्स हों, अभिलेख हों, आदेश हों, पांडुलिपियां हों, या आपकी शरण के संबंध में कोई वीडियो ऑडियो कॉल्स हो, इन सब की सूचना ली जा सकती है, बशर्ते कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध ना हो, जिसमें देश की सेनाओं के संबंधित सूचना और आपके जितने भी कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनसे संबंधित, या कोई ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध में हो,
1: जी
0: गोपनीय हो, और ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा सकती, और ऐसी सूचनाएं भारत सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्राप्त की जा सकती हैं।
1: वकील साहब, इससे पहले अभी राइट टू प्राइवेसी का जिक्र आया था और अभी हम सूचना के अधिकार की हम बात करते हैं। सूचना का अधिकार यानी कि कुछ ना कुछ जानकारी किसी ना किसी विषय में, किसी कार्यालय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किसी की अगर राइट टू प्राइवेसी के साथ अगर ये टकराव में आता है, तो उस स्थिति में कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है?
0: हाँ, इस संबंध में जो कानून 2005 में बना, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमेंडमेंट लाया गया, और जो 2023 में अभी आया है, उसमें ऐसी बहुत सी सूचनाएं हैं जो व्यक्ति की पर्सनल सूचनाएं हैं, राइट ऑफ प्राइवेसी एक्ट के अंतर्गत वो देने से धारा 8(1)(j) के तहत निषेधित की गई है, क्योंकि कोई भी सूचना धारा 6 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत ली जा सकती है, और यदि यह सूचना विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती है, तो सेक्शन 19 के अंतर्गत इसकी प्रथम अपील उस उच्च अधिकारी को हो सकती है, और इसके बाद इसकी द्वितीय अपील राज्य सूचना अधिकारी को या राज्य सूचना आयुक्त से अपील करके ली जा सकती है, जो 45 दिन में देंगे, और अगर वहां से भी सूचना नहीं मिलती है तो उसकी आप द्वितीय अपील नेशनल सूचना अधिनियम के अंतर्गत नेशनल सूचना अधिकारी से भी, राष्ट्रीय सूचना आयुक्त के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8(1)(j) के अंतर्गत ऐसी कोई भी सूचना जो किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को भंग करती हो, वह सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा।
1: वकील साहब, यदि कोई सामान्य नागरिक किसी सूचना को चाहे, तो सूचना के अधिकार जो उसका अधिकार है को आजमाने की उसकी प्रक्रिया क्या होगी?
0: यदि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी सूचना चाहता है जो देश की संप्रभुता को छेड़छाड़ ना करती हो, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से संबंधित ना हो, न्यायालय से संबंधित ना हो, तो वह एक साधारण प्रार्थना पत्र लिख करके उसके साथ 10 रुपये

0: का पोस्टल ऑर्डर लगा करके, और अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे है तो उसे 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी लगाने की जरूरत नहीं है, और उसको वह सूचना संबंधित विभाग के अधिकारी से मांगनी चाहिए। यदि वह 30 दिन के अंदर वह सूचना नहीं देते हैं तो उसके बाद आप उसकी अपील उनके प्रथम जो उनका वरिष्ठ अधिकारी है, जो जन सूचना अधिकारी है, ये सहायक जन सूचना अधिकारी और सहायक सूचना अधिकारी में बटे होते हैं, उनसे कर सकते हैं, और वो हर हाल में आपको 45 दिन में देंगे। यदि कोई जो सूचना देनी अनिवार्य है और नहीं दी जाती, यदि आप अपीलीय न्यायालय में यह सिद्ध कर देते हैं, तो अपीलीय न्यायालय अधिकतम 25,000 रुपये की पेनल्टी उस अधिकारी पर लगाएंगे जिसने सूचना छुपाई है, और 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे वसूली भी होगी जो पीड़ित को सूचनाकर्ता को मिलेगी।
1: वकील साहब, यदि मांगी गई सूचना के जवाब में जो सूचना किसी व्यक्ति को मिलती है और उस सूचना से वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है या उसको लगता है कि यह सूचना अधूरी है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है?
0: देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो सूचना अस्पष्ट हो या अधूरी हो या ना दी गई हो, तो उसकी अपील उससे वरिष्ठ अधिकारी को की जा सकती है, जो सेक्शन 19(1) में है, और उसके लिए अलग से पोस्टल ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले सूचना मांगी थी उसके पोस्टल ऑर्डर की फोटोकॉपी और वो सूचना का प्रारूप वहाँ साथ में लगाना होगा अपील के, कि ये सूचना चाही गई थी जो नहीं दी गई है। और अगर वो अपीलीय अधिकारी ये मानता है कि हाँ आपकी सूचना जायज़ थी और नहीं दी गई, तभी वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं और सूचना भी देंगे।
1: क्या पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर भी सूचना का अधिकार लागू होता है?
0: हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर यह सूचना अधिकार अधिनियम लागू होता है। बहुत बार देखा गया है कि कार्य हो जाते हैं और या कार्य नहीं होते और उनका पैसा रिलीज हो जाता है, तो हर ग्रामवासी को अपनी पंचायत में हुए विकास कार्य की जानकारी लेने के लिए सूचना मांगने का अधिकार है, जो जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से, जो खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मांगी जा सकती है।
1: सर, क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निजी संस्थाओं पर भी लागू होता है?
0: हाँ, यह आंशिक रूप से लागू होता है, पूर्ण रूप से नहीं।
1: जी
0: अगर निजी संस्थाओं की प्राइवेसी उसमें भंग होती हो, उसमें कोई गोपनीयता भंग होती हो, तो धारा 8(1) के अंतर्गत उसे ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
1: सर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी एक क्रांतिकारी कदम है। एक सामान्य नागरिक को ताकतवर हथियार के रूप में इसको देखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं समाज सेवा की, तो इस ये जो RTI का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसको देश के हित में या फिर लोगों के हित में कोई व्यक्ति समाज सेवी है तो वो किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकता है?
0: देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पहले आम जन को पता ही नहीं रहता था कि उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या योजनाएं आई। इससे बहुत कुछ सार्वजनिक हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना अधिकार समझकर धंधा बनाया है, वो गलत है। उससे कुछ लोग दुरुपयोग भी करने लगे हैं इस अधिकार का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। हमारे देश में करप्शन बहुत कम हुआ है, काफी हद तक इस चीज से लोग डरे हैं कि भाई करप्शन होगा, किसी की संपत्ति की आप सूचना मांग सकते हैं कि इस दिन कितनी थी, आज कितनी है, तो इससे लोगों को ये लगा है कि उन्हें कुछ छिपा नहीं सकते वो इस एक्ट के तहत। तो बहुत अच्छा कदम है एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त समाज बनाने के लिए। और समाज सेवा की जहां तक बात है, समाज सेवा में भी ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है। यदि कोई दिल से करे और किसी को न्याय दिलाना चाहे, तो RTI के माध्यम से बहुत न्याय दिलाया जा सकता है।
1: सर, आप भी एक समाज सेवी हैं, एक अधिवक्ता हैं, कानून से आपका ताल्लुक है और साथ के साथ बार एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष भी हैं, तो आप अपना कुछ तजुर्बा हमारे साथ साझा कीजिए जो आपके समाज सेवा की जो यात्रा है उसका।
0: देखिए, बार एसोसिएशन रामपुर हमारी एक संस्था है। हम अधिवक्ता कल्याण कोष के नाम से अपने निजी फंड से, अपने खुद के कलेक्शन से एक फंड चलाते हैं। हम अपने एडवोकेट्स को 2 लाख तक का इलाज के लिए दे सकते हैं अपने फंड से।
1: जी
0: इसके अलावा पहले 2.5 लाख रुपए डेथ पर देते थे, अब हमने 3.5 लाख रुपए प्रत्येक अधिवक्ता को देना निश्चित किया।

0: है जिनकी डेथ हो जाती है आए समय जिस भी अधिवक्ता की, और 35 साल तक की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता को कुछ निश्चित रकम जमा करनी होती है साल की, 1500 रुपए, लेकिन इसके बाद हमने वो भी छूट प्रदान की है। तो इस तरह हमारा वो कार्य चल रहा है अपने अधिवक्ताओं की सेवा के लिए। इसके अतिरिक्त हम अधिवक्ता होने के कारण समाज के दबे कुचले लोग जो बहुत महंगी फीस लोगों को नहीं दे सकते, हम बहुत से लोगों के लिए निःशुल्क कार्य करते हैं। और माताएं, बेटियां, बहनें जिनके लिए आज जो परिवार हैं बिछड़ रहे हैं, हमने काफ़ी प्रयास किया है कि उन्हें एक साथ मिलाया जा सके। और भूमि संबंधी बहुत विवाद हैं, लोग आज जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, लोगों की जमीनें हड़पने में लगे हैं, उसमें भी हमने काफ़ी हद तक अधिकारियों से मिलकर लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम के इस अंक में आज हमने बात करी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में, जिस पर सार्थक जानकारी हमें दे रहे थे सतनाम सिंह मट्टू जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन रामपुर के। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम कानून और हम। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी वार्ता, विषय था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वरिष्ठ अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू से बात कर रहे थे अवधेश कुमार गौतम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:13 हुए हैं। आइए सुनते हैं जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर यानी 7:31 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गजलें कलाकार सुरेश वाडेकर के स्वरों में। व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत का ताचल आप सुन सकेंगे आज शाम 8 बजे। अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए आपको डायल करना है या आपको व्हाट्सएप करना है 9410087876 पर अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम आज के मेहमान आप तक पहुंचाएंगे 9:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आज सेगमेंट इमारतें बोलती हैं मैं, और आज आप सुनेंगे कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पुष्कर मिश्र को। प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की होगी। कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से आज रात्रि 10 बजे। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि श्रोता सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की, और आइए अब सुनते हैं जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल की कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर श्रोता सुन सकेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:30 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का चिंतन के अंतर्गत महात्मा गांधी का शब्द चरित्र। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश आप तक पहुंचाएंगे 6:35 पर, जिसके अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। विषय होगा लीवर की समस्या और घरेलू नुस्खे। श्री रामचरित मानस गान श्रोता सुन सकेंगे 6:45 पर। कार्यक्रम

श्रोता सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे कल प्रातः 7:31 पर। कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन गुलाम मुस्तफा खान का राग भीम पलासी को, प्रातः 9:50 पर।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का

0: लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के

0: सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश। नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कलाकार सुरेश वाडेकर के स्वरों में कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत सुरेश वाडेकर के स्वरों में कुछ गजलें। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार का ध्यान रखते हुए सुन रहे होंगे आकाशवाणी से प्रसारित आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम गीत गाता चल में पहला गीत जिसको बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है वो है फिल्म चितचोर से। गायक हैं हेमलता और यशुदास। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी लोगों ने मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। इसी गीत को नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहा है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सुरेश, सरोज, सुजाता सलोनी, सुबोध संजू, लल्ला, पूजा पिंकी, बाबू शिवा चौरसिया और शिवानी, साथ ही योगेंद्र नायक कासगंजी। इसी गीत को भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से सुना चाहे हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा ने। बेरड़ी से हमारे अनुरोध करता है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवाशेरे। नाज मंजिल महसौल सीतामणि से हमारे श्रोता हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमी, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। कुआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, पुत्रा मुश्तबा खान, पुत्री अल्फिया खान और शाहिद भाई, साथ में राहु भाई। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंजा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता और इनके सभी साथी। गांधी समाधि रोड से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। मैं इसी गीत को सुनना चाहते हैं, साथ में राजदौरा कोठी, अफसर लाला से रूमा खान, बॉबी खान, मदिया खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म चितचोर से हेमलता और यशुदास के स्वरों में ये खूबसूरत संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहा है बहुत से श्रोताओं ने, जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अनुरोध भेजा है, और गीत है फिल्म कभी कभी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी लोगों ने। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटखेर।

श्रीमती नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे, अम्बेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, जतूका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान रही, इमरान रजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज, संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंघलकर, दिशांत कुमार सिंघलकर और अर्पिता जी, ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी और रईस दुल्हा अंसारी, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गज भैये, राधिका बीबी, अनिष्का और तन्मय गज भैये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दिवांगन, कौशल्य दिवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन, गांव खबारी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवन्या, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूमी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह, गांव मिलक भूजपुर जिला मुरादाबाद से आदिल हुसैन, रजा हुसैन और शाहिद हुसैन। इसी गीत को गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से सुनना चाहते हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युवद कड़वासरा, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महे खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव और परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए, आप सभी के अनुरोध पे सुनते हैं फिल्म कभी कभी से मुकेश और लता मंगेशकर के सुरों में ये गीत।

श्रोताओं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब की फरमाइश हम तक पहुंच रही है लगातार, और प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी की फरमाइश को हम आप तक पहुंचा पाए। अगला गीत फिल्म मेरी जंग से, गायक कलाकार हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी लोग। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक और कमल, खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई, जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा डोमीन और जाह्नवी, चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभारानी यादव, सुरेश और नरेंद्र यादव, बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नांगर, अंजू मोहित, लक्की नांगर, तानिया, रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, विरमगाम सिटी से अजीता, इसी गीत को सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से सुनना चाहते हैं दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा, बिलाईगढ़ से देव डुकर, तुषार और अजय देव, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत नायक और इनके दोस्त सुरेश चौरसिया फरुखाबादी, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से मोहम्मद सूफियान, सैफ, आफरीन और अनल्स, अमरावती महाराष्ट्र से शाहिद भाई, असफिया परवीन, अल्फिया, सदफ, सूफियान।

Fatma. डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया. इसी गीत को कबीर कॉलोनी लिसनर्स क्लब लोनी से सुना चाहते हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वी राजपूत. शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी. जेल रोड रायगढ़ से लाल चंदन मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा. कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमोरिया, जयदेव तमोरिया, तुषार देव तमोरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी, साथ में मास्टर अल कबीर. पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा. खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमें अनुरोध प्राप्त हुआ है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा से. कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, हैप्पी रॉय, अमित कुमार रॉय. दुबीहा निबादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी और परांजल रॉय. तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म मेरी जंग से शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में ये नगमा.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म ईमानदार से, गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और आशा भोसले। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित अभयरिया और आरुष। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और आसमान अंसारी। सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जानवी डोमीन, यामिनी और रोहित डोम। डोंडी लोहारा से फर्जी हरिशंकर बेलदार और फर्जू प्रभारानी बेलदार। जेल रोड रायगढ़ से उमाराज और जगदीश राज। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। दौलतबाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन और समीर मलिक। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा। इसी गीत को पुराना तालाब डुमराओं से सुना चाहते हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिपाल। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से श्रोता हैं हमारे लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई, निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहरबाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुनदीबाई बागरी। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफ।

प्रीति और साथी, तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म ईमानदार से सुरेश वाडेकर और आशा भोसले के सुरों में ये सुंदर सा गीत।

0: है कि भारतवर्ष में जहां भी जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनका सूचीकरण तो हो जाए कम से कम। सूचीकरण होने के बाद स्कॉलर्स को, विद्वानों को ये पता चलेगा कि किन किन विषयों पर कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं और उसका अध्ययन होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक हम केवल 55 लाख पांडुलिपियों को देख सके हैं कि उनमें क्या है। 45 लाख 1 करोड़ के अनुमान में, अब तो करीब वो मैं मान के चलूं कि 1 करोड़ 45 लाख से ऊपर पांडुलिपियां होंगी
1: जी
0: जिनका हमें मालूम ही नहीं है कि उनमें है क्या, उनको खोलकर देखा नहीं गया है। तो रामपुर रजा पुस्तकालय के पास अपना एक प्रयोगशाला है, संरक्षण प्रयोगशाला है। हम पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन और जहां आवश्यकता हुई प्रकाशन,
1: जी
0: इस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। हम यहां पर अनुवाद केंद्र के रूप में, तो जैसा मैंने पहले ही बताया ये हमारी विश्व दृष्टि में है,
1: जी
0: उसमें इन पांडुलिपियों में विषय क्या है इस पर अधिक बल देने वाले हैं, ताकि हमें पता तो चले कि विश्व का सबसे अधिक साहित्य हमारे पास है उसमें है क्या। तो इस नाते से हम विद्वानों को अपने संस्थान से जोड़ेंगे।
1: जी
0: इसके लिए हमने कई समितियां बनाई हैं। अभी हाल ही में संरक्षण समिति की बैठक हमने की, जिसमें हम कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं। उस कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत हम भवन को, दो भवन हैं हमारे पास, हामिद
1: जी
0: मंजिल और रंग महल, इन दोनों को इनके वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त हो, उस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में एक पत्रिका है जो भवनों के सौंदर्य को लेकर पुस्तकालयों के, उसने एक इंडेक्स बनाया,
1: जी
0: 12 पुस्तकालयों का बनाया पूरे विश्व में, उसमें 8वें नंबर पर रामपुर रजा पुस्तकालय है।
1: जी
0: मैं रूस गया था, वहां हमारे भवन को देखकर सब हतप्रभ थे। हम इसे ताज ऑफ बुक्स या कि पुस्तकों का ताजमहल भी कहते हैं। तो इसका जो एक वास्तु है वह अपने आप में बहुत ही अनूठा है
1: जी
0: और पूरे विश्व में इसका आकर्षण है। हमारे जो संग्रह हैं, मैं हतप्रभ रहता हूं कि कोरिया से, जापान से, अमेरिका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से तो आते ही हैं, विशेषकर ईरान से
1: जी
0: के विद्वान हमारे पास आते हैं और उनको हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स में, बड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हमारी ऐसी हैं कि आपको लेंस से देखना पड़ेगा कि
1: जी
0: वो हैं क्या, वो अपने आप में अनूठी कृतियां हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा सारा संग्रह है इस पर ठीक प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन हो और एक विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं अनुवाद केंद्र के रूप में हम विकसित हों, उस दिशा में बढ़ रहे हैं।
1: जी
0: हमने अकादमिक और संस्कृत सलाहकार समितियों की भी बैठक की, उसमें भी योजनाएं बन गई हैं कि आगे हम उसको कैसे करने वाले हैं। फिर हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो पुस्तकालय की पहचान है उसको कैसे आगे ले जाएं,
1: जी
0: उसके लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक एवं सांस्कृतिक सलाहकार समिति बनाई है।
1: जी
0: उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है बना ली है और वो क्रियान्वयन की योजना वो बना रहे हैं कि ऐसे करें। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक करने वाले हैं और आगे जो है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की, जिसमें हमने यह निर्णय लिया था कि रामपुर किले की समस्त भूमि हम रामपुर रजा पुस्तकालय के नाम पर लेंगे
1: जी
0: और उसमें विभिन्न संस्थानों को विकसित करेंगे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट और प्लानिंग की जो सलाहकार समिति है वो उस पर काम करेगी। आप जानते ही हैं कि रामपुर के निकट में ही जिम कॉर्बेट पार्क है,
1: जी
0: कैंची धाम है, नैनीताल है, तो यह एक टूरिस्ट सर्किट का केंद्र भी रामपुर रजा पुस्तकालय बने, उस दिशा में भी हमारी ये समिति काम करेगी। इस तरह
1: जी
0: से हमने कॉरपोरेट जगत के भी कुछ दिग्गजों को इसमें लिया है। पर्यटन की दृष्टि से भी रामपुर रजा पुस्तकालय को एक केंद्र के रूप में विकसित करें,
1: जी
0: जिसमें हमारे रामपुर में भी आप देखेंगे तो बहुत से भवन और आकर्षण के केंद्र हैं, उन सबको रामपुर रजा पुस्तकालय आगे कैसे उनको विश्व स्तर पर

0: पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आगे बढ़े, उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं।
1: जी, लाइब्रेरी और म्यूजियम में बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हैं ही, इसके अलावा इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन वेपन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, और भी ऐसे बहुत से चीज हैं, बहुत से ऐसे
0: जी
1: वस्तुएं हैं जिनकी ओर सभी का ध्यान जाता है, और वो भी अपने आप में एक शोध का विषय रहे हैं, उनके बारे में भी प्रकाश डालिए।
0: जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास ऐतिहासिक कॉइन्स हैं जिनको
1: जी
0: आप सिक्के कहते हैं, वो हैं। फिर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनका उपयोग जो है एस्ट्रोनॉमी में मेजरमेंट के लिए होता है, वो भी हैं हमारे पास। फिर हमारे पास मुहर लगी हुई हुए दस्तावेज हैं मुगल शासकों के।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारे पास आयुध भी हैं, तलवारें हैं, और भी जो रक्षा के लिए शील्ड यूज की जाती है वो भी है। तो हमारा संग्रहालय जिसको हम अब और अच्छे ढंग से रखने वाले हैं, और हम एक बुक म्यूजियम भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो संग्रह हैं उनको देखने के लिए लोगों का बड़ा वो रहता है, तो LED के माध्यम से उनको कैसे लोग देख सकें,
1: जी,
0: और हम गैलरीज विकसित करेंगे जिसमें हमारे जो संग्रह हैं वो भी म्यूजियम, बुक म्यूजियम में लोग आकर देख सकें। कुरान जो है वह हजरत अली की लिखी हुई, वह किस रूप में है, रामायण किस रूप में है, पंचतंत्र किस रूप में है, या मंगोलिया का इतिहास, जैसे मंगोलिया का इतिहास है वो इलस्ट्रेटेड है, उसमें पेंटिंग्स भी हैं, रामायण भी इलस्ट्रेटेड है, उसमें भी पेंटिंग्स हैं, और बड़ी उत्कृष्ट चित्र हैं उसमें। तो आपको मंगोलिया में उन वहां की राजधानी में उसको लेकर उन्होंने एक प्रदर्शनी भी की थी। तो पूरे विश्व में रुचि है कि रामपुर रजा पुस्तकालय के संग्रह में जो अमूल्य निधियां हैं उनके बारे में जाने, और उस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, बहुत से शोधार्थी हैं या आम जनता भी है जो चाहती है कि हम इन रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखें, पढ़ें, छूएं, उनकी ऐसी इच्छा रहती है। वहीं ये भी उतना ही बड़ा विषय है कि कितने अहम डॉक्यूमेंट्स ये हैं, कितने अच्छे से इनको सहेज कर रखा जाए, तो उनके कंजर्वेशन को लेकर भी लगातार कार्य आपके लाइब्रेरी में होते ही हैं। डिजिटलाइजेशन को लेकर सरकार का इनिशिएटिव है, तो शोधार्थी जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते या यहाँ के रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, उन पर कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा भी उपक्रम है जिसके अंतर्गत इन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज किया जा रहा है या आम जनता की जो पहुँच है वहाँ तक लाया जा रहा है?
0: हमारे जो संग्रह हैं उनका 70% डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है,
1: जी,
0: और उनकी डिजिटल कॉपीज हम ऑनलाइन माध्यम से ईमेल या जैसे भी हो उसको उपलब्ध कराते हैं। उसका शुल्क है
1: जी,
0: वो शुल्क देने पर हम उसकी डिजिटल कॉपीज उपलब्ध कराते हैं, और विश्व भर के विद्वान जो हैं उससे लाभ उठा रहे हैं उन डिजिटल कॉपीज से। ये प्रक्रिया आगे चल रही है, हम आने वाले समय में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ने वाले हैं, जिसमें टॉकिंग बुक्स का, ये मैंने रूस में जब प्रतिनिधित्व किया था रामपुर रजा पुस्तकालय इसका इंडो रशियन लाइब्रेरी डायलॉग में, तो मैंने वहाँ कहा था कि हम टॉकिंग बुक्स का भी आने वाले समय में रामपुर रजा पुस्तकालय में प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा उस चैटबॉट पर टॉकिंग बुक्स में कि जैसे आप स्वयं पुस्तक के कर्ता से बात कर रहे हैं, ऑथर से बात कर रहे हैं, जिसने उसको रचा है उससे बात कर रहे हैं, और तमाम तरह के प्रश्नों का वो उत्तर आपको जो चैटबॉट के माध्यम से या टॉकिंग बुक्स के माध्यम से मिलने वाला है। तो तकनीक का कितना अच्छा और भरपूर उपयोग हो सकता है विद्या क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, उस दिशा में रामपुर रजा पुस्तकालय तत्पर, सक्रिय और आगे बढ़ रही है।
1: जी, लाइब्रेरी ओरिएंटल है, बेहद महंगे, बेहद रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ हैं, लेकिन हम देखते हैं साथ ही साथ अच्छी संख्या में रीडर्स भी वहाँ पहुँचते हैं, डेली रीडिंग करते हैं। आज के दौर में युवा थोड़ा डेली रीडिंग से या बुक रीडिंग से हटा है, चूँकि आपका ये फील्ड है लाइब्रेरी का और आप स्वयं भी एक्सपीरियंस करते होंगे इन चीज़ों को, आप क्या देखते हैं कि कैसे दोबारा लाइब्रेरी तक पहुंच युवाओं की हो, कैसे उनको इंटरेस्ट उनमें पैदा किया जाए कि वो लाइब्रेरी तक पहुंचे, न केवल जो ओरिएंटल चीज़ें हैं वो देखें बल्कि रीडिंग हैबिट भी उनमें डेवलप हो?
0: इसमें एक बात ऐसा नहीं है कि रीडिंग हैबिट नहीं है युवाओं में, एक ये भ्रम है हम लोगों के बीच। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में व्याख्यान देने गया और अन्य विश्वविद्यालयों में देखने गया, हमारे बच्चे अब 90% से ऊपर अंक लाना एक सामान्य सी बात हो गई है। वो बिना अध्ययन के या पुस्तकों को पढ़े नहीं हो सकता है। तो यह कहना कि युवा उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से, और जो क्रय है पुस्तकों का वो भी आप डिजिटल माध्यम से अब कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे में लाइब्रेरी आने के स्थान पर, और समृद्धि भी भारत की बढ़ी है, तो लोग पुस्तकें ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं और ऑनलाइन माध्यम पर आपको पुस्तकों की डिजिटल कॉपी भी प्राप्त हो जाती है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा, ये जो पूरा आने जाने का, पुस्तकालय में जाने का और अपने घर के कंफर्ट में पढ़ने का जो अंतर है, उसकी वजह से पुस्तकालयों में जो है आना कम हुआ है। ये विश्व भर में हुआ है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हुआ है। और ये अच्छी बात भी है कि अब लोगों को मिल रहा है सामग्री जो है उनके घर पे ही मिल रही है। अब इसमें ये आती है कि पुस्तकालयों की भूमिका क्या होनी चाहिए आने वाले समय में। निश्चित तौर पर जो हार्ड कॉपीज हैं उनका अपना महत्व है, उनका संरक्षण, और विद्वानों को जब वे चाहें उनको उपलब्ध हो जाएं वेरिफिकेशन की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से, वह एक काम तो है ही। अच्छी सुविधाएं देना जो भी वहां पाठक गण आते हैं
1: जी।
0: दूसरा, रामपुर रजा पुस्तकालय के एक लाभ है वो ये है कि स्पेशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से लोग अपने घरों में कई बार नहीं पढ़ पाते। मान लीजिए छोटा घर है, उसमें 10 लोग हैं, तो वहां पढ़ने उनके लिए लाइब्रेरी एक सुगम स्थान, एक कंफर्ट देता है कि वहां आकर पढ़ सकें और कई रेफरेंसेस को एक साथ देख सकें। तो वैसे भी लोग आते हैं हमारे, इसलिए हमारे रामपुर रजा पुस्तकालय में पाठकों की संख्या ठीक ठाक रहती है। अब यह है कि पुस्तकालय आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी। अब हमको पुस्तकालयों को एक कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकसित करना होगा। और आपने देखा होगा कि गत 2 वर्षों में, जब से मैं आया हूँ रामपुर रजा पुस्तकालय, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक के बाद एक किए। हमने अब तक 2 महोत्सव कर चुके हैं हम अपने स्थापना दिवस के अवसर पर। गत वर्ष भी किया था और उससे पहले वाले वर्ष में किया था, और इस वर्ष में हम और भव्य महोत्सव करने वाले हैं। तो ये महोत्सवों का आयोजन, फिर हमने वीरोत्सव किया था जब पहलगाम की घटना हुई थी,
1: आपने युवाओं को जोड़ा, बच्चों को
0: जोड़ा, वो ऐतिहासिक रहा। प्रदर्शनियां हम बराबर करते रहते हैं जिससे युवा आए, वो आए और देखें। युवाओं के लिए हमारा विशेष प्रयास है, बच्चों के लिए विशेष प्रयास है। हफ्ते में कम से कम 1-2 स्कूल तो हमारे यहाँ आ ही जाते हैं, मुरादाबाद से, बरेली से, और भी इस प्रकार के कई कॉलेजेस से हमारे यहाँ बच्चे और वो आते हैं। तो एक हमारा जो है कम्युनिटी सेंटर के रूप में विकास हो पुस्तकालय का, उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। वीरोत्सव हो, योगोत्सव हो, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, गोष्ठियां हो, ये हम लगातार करते रहते हैं। कोई भी ऐसा महान पर्व जो भारत का है उस पर प्रदर्शनी न लगे रामपुर रजा पुस्तकालय में, ऐसा नहीं होता है। कोई प्रदर्शनी हमारे हर 15 दिन, महीने में 2-3 प्रदर्शनियां हम लगाते हैं
1: जी।
0: तो उससे भी आकर्षण है लोगों का। हमारा फुटफॉल लगभग 2 गुना हो गया है जो अब से 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले था, उससे अब का फुटफॉल लगभग दुगुना हो गया। अब हमने जो है इन प्रयासों से रामपुर और इस पूरे रुहेलखंड मंडल के लोगों को न केवल जानकारी है, उन्हें इस बात का गर्व है कि रामपुर रजा पुस्तकालय जैसा उत्कृष्ट संस्थान उनकी धरती पर है
1: जी।
0: तो यह एक परिवर्तन आया है। दूसरा, हमने जो सलाहकार समितियां बनाई, मैं कई कॉलेजेस में गया, वहां भी मेरे अकादमिक कार्यक्रम लगते हैं, वहां मैं रामपुर रजा पुस्तकालय के बारे में बताता हूँ। और लोगों को अब यह जानकारी हो गई है अकादमिक सर्कल्स में गत 2 वर्षों के निरंतर प्रयास से, कि अब सब लोग जानने लगे हैं कि रामपुर रजा पुस्तकालय जैसी महान संस्था भी हमारे भारतवर्ष में है, जो न केवल रामपुर के लिए गर्व का विषय है, रुहेलखंड के लिए, उत्तर प्रदेश के, या भारत के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए गर्व का विषय है कि ऐसी समन्वयवादी विश्व दृष्टि के साथ एक संस्थान है
1: जी। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आप डिस्प्ले पर लगाते हैं समय समय पर, उनको संजो कर रखने के लिए, सहेज कर रखने के लिए

0: ये भी विस्तार से कार्य होते हैं, पूरी प्रक्रिया है उनको कंजर्व करने की। थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि आम जनमानस के लिए शायद वो जानना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से केमिकल अप्लाई होते हैं, किस तरह से उनको सहेज कर रखा जाता है, ताकि पता लगे कि ये जो नायाब चीज़ें हमारे बीच में हैं, इनको संरक्षित रखकर कितना मुश्किल कार्य है।
1: हमारे पास आप जानते होंगे एक समय में और अब भी हमारी कंजर्वेशन लेबोरेटरी जो है वो
0: जी
1: वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, हम उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन लेबोरेटरी में हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। दो स्तर के संरक्षण होते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है कि वो उनकी हालत बिगड़े ना
0: जी
1: और वो सुरक्षित रहें। दूसरी क्यूरेटिव होती है, डैमेज हो चुका है, अब उसको कैसे हम क्योर करें। तो उसके लिए हमारे पास अभी जो मैंने कंजर्वेशन की थी उसमें हमने 8 कंजर्वेशन पॉलिसी के लिए सब कमिटी बनाई है,
0: जी
1: जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स के चयन को लेकर कि भाई हमें किन को प्राथमिकता देनी है और उन पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में बढ़ना है। लगातार काम चल रहा है। आप सोशल मीडिया अगर देखते हो रामपुर रजा पुस्तकालय का, तो हम जो जो हम संरक्षित करते जाते हैं उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं, तो
0: जी
1: आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हम लगातार वो काम चल रहा है। अभी हम उसको और बड़ा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें नए विशेषज्ञों को भी लाएंगे, उनकी संख्या बढ़ाएंगे ताकि हम इसको और गति दे सकें।
0: जी
1: दूसरा हमारा ये भी है कि ज्ञान भारतम की जो पांडुलिपियां हैं, जिनको 2 से 3 करोड़ की जिनकी संख्या है, उसमें हम अन्य संस्थानों के साथ भी साझेदारी करके वहां हमारी टीम जाकर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के संरक्षण की दिशा में काम करेगी। तो ये हम एक्सपेंशन का भी प्लान हमारी इस दिशा में है। केमिकल्स का उपयोग या जो उपचारात्मक है, यानी कि जिसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं या वो
0: जी
1: क्यूरेटिव कहते हैं, और प्रिवेंटिव की दृष्टि से केमिकल्स इत्यादि का प्रयोग होता है, जो समय समय पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रयोगशाला के, वे देखकर और उस दिशा में निरंतर करते रहते हैं काम। ये निरंतर चलने वाला, ये वैसे ही है जैसे लाइव स्टॉक है।
0: जी
1: लाइव स्टॉक का मतलब जैसे आप कोई पशु पालते हैं
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: उसका
0: जी
1: आपको सतत ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार से पांडुलिपियों का भी सतत ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे पास वो विशेषज्ञ टीम है जिसको हम आगे आने वाले समय में और बढ़ाने वाले हैं, वो उस दिशा में काम कर रहे हैं।
0: जी लगभग साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने आम जनमानस तक, श्रोताओं तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो आसपास के क्षेत्र का है, वो भ्रमण के लिए यदि आना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है और क्या कुछ उसको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और क्या टाइमिंग्स रहती हैं, कब बंद रहता है, इन सब के बारे में ज़रूर बताएं।
1: हाँ, हमारा पुस्तकालय 10 से 5
0: जी
1: खुला रहता है प्रत्येक दिन,
0: जी
1: सोमवार को छोड़कर। सोमवार को क्योंकि म्यूजियम्स में पूरे देश भर में अवकाश होता है, तो हमारे यहाँ भी सोमवार को 6 दिन जो है मंगलवार से रविवार तक हमारा पुस्तकालय खुला रहता
0: जी
1: है। यह आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। एक पहचान लेके, चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये पुस्तकालय, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से कोई पहचान पत्र अपना लाकर वहाँ सिक्योरिटी के लोगों को अगर वो दिखा दिया जाता है तो एक एंट्री होती है और सहज रूप में आप वहाँ प्रवेश कर सकते हैं।
0: जी
1: मुझे बड़ा हर्ष है कि इस वर्ष में मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ा गर्मी है लेकिन कल ही मैंने देखा ये अच्छी खासी संख्या थी, इस धूप में भी वो लोग आ रहे हैं उसे देखने। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें अच्छी खासी संख्या में लोग वहां न देखें। और एक चहल पहल सी भी दिखने लगी है, जो मैं जब नया नया आया था तब नहीं दिखने को
0: जी
1: मिलती थी, लेकिन अब दिख रहा है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है जिस दिन लोग ना हो। तो लोगों को जानकारी मिल रही है रामपुर रजा पुस्तकालय की, उनकी रुचि जगी है और वो आ रहे हैं, और वर्ड ऑफ माउथ वो जाके दूसरों को बताते हैं
0: जी
1: और उससे जो है और लोग आ रहे हैं। तो ये चल रहा है और कोई भी आ सकता है, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ, अगर आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखनी है, पुस्तकों के लिए भी कोई नहीं है, आप अगर कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ आइए, हमारे जो रीडिंग रूम में लोग हैं उनको बता दीजिए, कैटलॉग देख लीजिए, वो पुस्तक लाकर आपको दे देंगे, आप उसको पढ़िए, उससे लाभ लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए हम थोड़ा एक विशेष है कि आप किसी संस्थान से जुड़े होने चाहिए और उस संस्थान का एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि भाई आप इसका अध्ययन इस दृष्टि से कर रहे हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हम सहज रूप में उपलब्ध करा देते हैं, दो तीन लोग हमारे खाली इसी काम में लगे हैं कि अगर कोई आता है तो उसे पांडुलिपियां सहज रूप में उपलब्ध हो जाए, ये हम निरंतर करते हैं इसको।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ आप थे निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय डॉक्टर पुष्कर मिश्र। बड़े विस्तार से आपने जानकारी दी रामपुर रजा लाइब्रेरी के बारे में, विभिन्न आयाम, जो भी विजन डॉक्यूमेंट है, क्या कुछ भविष्य में नई नई चीज़ें रामपुर रजा लाइब्रेरी लेकर आएगी, उसके बारे में विस्तार से आपने बताया। डॉक्टर साहब, आप समय निकालकर आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम आज के मेहमान के अंतर्गत डॉक्टर पुष्कर मिश्र, जो कि रजा पुस्तकालय के निदेशक हैं, उनसे की गई बातचीत। बातचीत कर रहे थे विक्रांत चौधरी, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओ नमस्कार, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओ यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
2: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक

विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली IPL व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। IPL न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई, बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, IPL की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी IPL की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो गए। इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल IPL की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल IPL की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है, बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से IPL ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ IPL का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार IPL चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार IPL खिताब जीता है। समय के साथ IPL में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए DLF समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन IPL की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेज को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए IPL के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थीं। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी IPL ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी IPL ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर IPL के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक IPL के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि IPL का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और GDP में IPL के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें, तो अब तक IPL प्रबंधन आयकर व GST के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी IPL के एक सकारात्मक योगदान

0: रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, आइए सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
2: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं, फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पे काम किया जाता है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभा करते हैं।
2: और वर्तमान में हमारे जिले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
3: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं, कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं, तो सारे उन मानकों पर है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है, खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
2: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
3: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं 8 खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा, एक 18 साल से नीचे है वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है, जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
2: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
3: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है, कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
2: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
3: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की वो कुश्ती वाली है, तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
2: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है?
3: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
2: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है तो उसमें क्या विशेष सुविधा है, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
3: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ, लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा, अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं।

0: चला रहे हैं स्विमिंग पूल।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
0: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कंपटीशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
0: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में। तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है। तो ग्रामीणांचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
0: जी बिल्कुल, विशेष योजना है। इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वही उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे, फिर सांसद खेल स्पर्धा वे जिले स्तर पर, और इसके बाद जोन स्तर पर आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पर, सब जूनियर स्तर पर और सीनियर स्तर पर। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके सिक्स प्लेस तक पोजीशन है वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान है, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से चार तीरंदाजी में बच्चे हैं और दो कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पे।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियां हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: अब इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे। सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि उतना कितना ये वर्क करते थे, जब ये सफल हुए तो उस पे फोकस करना पड़ेगा। बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं तो वो जरूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी उषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे। उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विदु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलिविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रैंड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आईएम नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपे सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान कार्लसन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोहरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉर्डरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
0: श्रोताओ, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

0: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:27 हुए हैं। प्रस्तुत है अनुरोध पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकृति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि में पहला नगमा जो मैं पत्रों के माध्यम से अपनी आकांक्षाएं जो हमारे सभी श्रोताएं व्यक्त करते हैं, आइए देखते हैं कि पहला जो नगमा है वो कौन सा है जो सुनना चाहते हैं। पहला नगमा है फिल्म आपकी दिल लगी से। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर। माफी चाहूंगा, पहला गीत है फिल्म आराधना से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। ये गीत पत्रों के माध्यम से हमारे जिन श्रोताओं ने सुनना चाहा है, आइए जानते हैं उनके नाम। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, जामरून ता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज जोशी और कुमारी साध्वी और साथ में परभणी हुन और गणेश हरमावकर। इसी गीत को वार्ड नंबर 1 भोपाली जिला यवतमाल से सुनना चाहा है जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता ने। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन हाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशमूणत, अतुल गौतमी धामदेना, अरुण काले, एडी कांबले इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला कोल्हापुर से। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं मास्टर मुनीर खान, संजय ढींगिया और अब्दुल सत्तार अब्बासी। जतूका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान रही, इमरान रजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुरावर लल्ला, पप्पू भाई बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। चंदन नगर सतारा से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति वर्षा श्रमन श्रमेन, विजय चौहान, तेजस्वनी चौहान, अंकिता निकेत, माया चौहान। इसी गीत को वर्षाण शाजापुर कोल्हापुर से सुनना चाहते हैं। तो लीजिए आप सबके अनुरोध पे फिल्म आराधना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म फागुन से, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, पुणे से प्रियंका

मकसूद हुसैन और आजिम अली। सरूद चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नांगर, अंजू नांगर और मोहित नांगर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। मेन रोड तिलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुनील, साहिल और कुमारी सुजाता पोहरकार। मोहल्ला पो बोराला धरणता मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका और गजानन घयाल। जिला भोंगीर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे फिल्म फागुन से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की सुरों में ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म पेइंग गेस्ट से गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गज भैया, राधिका गज भैया, बेबी अनिष्का, तन्मय गज भैया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रणामिका, उत्कर्ष नेता। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सुजला, रेयांश, सूरज और ज्योति ठाकुर। इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद वसीम, वलीउल्ला नूरजहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से अदिबा तिवारी, सोनम और रेशमा तिवारी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त परिवारगण। राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया, आरुष, विरासत। सादुलशहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक। भोपका भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्ष, सुमित्रा साहू। मोवा रायपुर से गोपेंद्र कुमार साहू और मंजू साहू। शहबाजपुर कला कस्बा पाकबड़ा से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस, अनास बेटा, मुजक्किर बाबू, मजहरा से और बेटी सुमैया महक। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमान मोल, धर्मवीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और आशा भोसले के सुरों में ये गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म पारसमणि से गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, और इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मलिक। ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद मीर हमजा। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन और मरियम और बुशरा। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, हैप्पी कुमार और अमित कुमार। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी और प्रांचल रॉय। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पे फिल्म पारसमणि से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में ये गीत।

0: जब याद आए, बहुत याद आए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में फिल्म दिल्ली का ठग से, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, मिलक भूजपुर, आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन और आसमा भी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और ज्ञावेंद्र कुमार वर्मा, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, मानवी, आयुषी, आराध्या, रुद्र, नैना सैनी, हीरावती देवी व सभी सैनी परिवार के सदस्य, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सपना, शिवी सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू, श्री तुलजा भवानी माता वार्ड खंडवा से अनिल विंचुरकर, मंगला शोभित विंचुरकर, उदयनगर से मोहित रत्नपारखी, स्वाति मिश्री और मनस्वी रत्नपारखी। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे दिल्ली का ठग फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में ये गीत।

फिल्म दिल्ली का ठग के इस गीत के साथ इजाजत दीजिए अपने रेडियो साथी रोहित कुमार को कृति को कार्यक्रम संपन्न करने की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए

0: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial